0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026 सुबह के 5:58:45 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरूआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंस

0: होने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए स्नान करें भक्ति धारा में और मंगलगान करें अपनी जन्मभूमि का भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के माध्यम से। कार्यक्रम की शुरुआत देशगान के साथ, जिसे आप सुनेंगे समूह स्वर में।

एकता और स्वदेश प्रेम को अभिव्यक्त करती ये देशभक्ति रचना आप सुन रहे थे समूह स्वर में। आइए अब करते हैं मां नर्मदा जी की स्तुति नर्मदा अष्टकम के रूप में। अमित देसाई और हेमा देसाई के युगल स्वर में इस स्तुति को आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे जीवनदायिनी और मुक्तिदायिनी माँ नर्मदा जी का गौरवगान अमित देसाई और हेमा देसाई से। लीजिए अब सुनिए कुमार विशु की आवाज में ये भजन।

जीवन के प्रति सचेत करती ये प्रार्थना आप सुन रहे थे कुमार विशु के स्वर में। लीजिए आप सुनिए ब्रशुभान तुलारी श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा जी को इस भक्ति रचना के साथ। गायक हैं अनूप जलोटा और साथी।

भजनावली के क्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीकांता ब्रशभानुसुता, माधव प्रिया और युगल सरकार की आराधना। कार्यक्रम के समापन में चलते हैं श्री श्याम बिहारी जी के दरबार में इस भजन के साथ, जिसे आप सुनेंगे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के युगल स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे श्री राधा बल्लभ मनमोहन प्रभु की प्रेम और प्रेरणा से भरी मनोहार इस भक्ति रचना के रूप में। गायक थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। इसी रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी कार्यक्रम विवरण के उपरांत सुबह 6:35 पर किसान श्रोताओं के लिए खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। विषय होगा पौध पोषक तत्व सल्फर। श्री रामचरित मानस गान सुनिएगा सुबह 6:40 पर। गायक होंगे श्रीकांत पारगांवकर। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का होगा। चिंतन का प्रसारण किया जाएगा सुबह 6:50 पर। सुबह 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे हिंदी महक श्रृंखला में हिंदी काव्य पाठ। कवि होंगे मोहम्मद जावेद कुरेशी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 7:30 पर, सुबह 8:45 पर, सायंकालीन सभा में शाम 5:40 पर और रात्रि 8:35 पर। सुबह 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे धारावाहिक गीत गीता का 14वां भाग। शीर्षक होगा गुणत्रय विभाग योग। लोकरंग कार्यक्रम आपके लिए पेश किया जाएगा सुबह 9:00। कलाकार होंगे प्रवीण कुमार। इसमें सुनिए आला गायन में भुजरियों की लड़ाई एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा सुबह 9:30 पर और आज की फिल्म होगी कुछ कुछ होता है। प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन हम प्रसारित करेंगे सुबह 10:05 पर। सुबह 10:10 पर सुनिए सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ। इसमें आप सुनेंगे कन्नड़ भाषा का गीत। गीतकार हैं बीआर गीता। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद लीजिए सुबह 10:30 पर। महिला सभा में दिन में 1:00 बहने सुनेंगी साबरा सिद्दीकी से उनका काव्य पाठ। इसके अलावा होगी उपयोगी जानकारी। संध्या के 5:00 युवा साथियों के लिए होगा युववाणी कार्यक्रम में आकर्षण युवा चौपाल। आलेख होगा फरीद अहमद खान का। प्रतिभागी कलाकार होंगे शिवांशु प्रजापति, शिवांगी तिवारी, अनुपम खरे, विश्वास तिवारी, सौम्या शर्मा, अभिषेक मिश्रा। इसके अलावा मिलेगी रोजगार सूचना। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:00। लोकधारा कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे अरविंद कुमार तिवारी। ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें सुनिए धारावाहिक अटकन चटकन। इसके अलावा वार्ता ग्रीष्मकाल तिल की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग का प्रबंधन। वार्ताकार होंगे शोभा राम ठाकुर। आज की नसीहत का विषय होगा जंगल में मोर नाचो कोने न देखो। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात्रि 8:00 हम अनुप्रसारित करेंगे विशेष श्रृंखला।

सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:15 पर अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट। रात 9:30 पर चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन आप तक पहुंचेगा रात्रि 10:00। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुबह 11:00 सुनिए।

0: मनभावन आप तक पहुंचेगा रात्रि 10 बजे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुबह 11 बजे सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश का आनंद लीजिए दोपहर 12 बजे 12:30 पर होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत। 1:45 पर होगा सुगम संगीत। दोपहर 2 बजे आनंद लीजिए फिल्म संगीत का और 2:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। किसान श्रोता सुने खेती किसानी कार्यक्रम।
1: हाँ पंच भैयारो, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं फसलन में सल्फर को का महत्व है। भैया देखो, जैसो कि अपन जानते ही हो कि अपनी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़त चली जा रही है, तो इके लाने अपने जो खाद्यान्न है, जब तक अपन इनको उत्पादन दोगुना ना करें तब तक अपने देश की जनसंख्या को भरण पोषण नहीं हो सकता है। इके लाने अपने किसान भैया अधिकांशता धान है, गेहूं है, दलहन है, इमें उत्पादन लेके ज्यादा से ज्यादा उको लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित करवो है। ई लक्ष्य खां पावे के लाने हमारे किसान पंच नत्रजन, स्फोर और पोटास को प्रयोग ज्यादातर करत हैं। जब ये तीन तत्व हैं, ई के अलावा भी कुछ और तत्व भी हैं जिनको प्रयोग भी अपन खां अपने खाद के रूप में देखें बढ़ाने पर है। जी में वो तत्व है सल्फर, और भैया जो सबसे महत्वपूर्ण है, खासतौर से तिलहन की फसलन में सल्फर को अवशोषण सबसे ज्यादा अच्छो मानो गो है। ई के बाद दलहन और खाद्यान्न फसलें जो है उनमें भी जो अपनो महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊ थे। 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर को प्रयोग करवे से धान, मक्का और सोयाबीन में अच्छी पैदावार मिलत है। इके लाने भैया अपन का कन्ने हैं कि धान में 25%, मक्का में 33% और सोयाबीन में 28% तक की वृद्धि ई सल्फर तत्व के दय से हो जाते है। पौधन के संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि के लाने अकेले 2-3 नहीं 16 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी जरूरत अपने किसान पंचन का पौधा के लाने परत है। तो जो द्वितीय पोषक तत्व सल्फर है, जो पौधन के पोषक तत्व के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ई को उपयोग अपन का जरूर करने हैं। इसे भी यह का फायदा होते है कि जो पंच ई को उपयोग कर रहे हैं उसे उनकी फसल अच्छी होते है, पैदावार अच्छी होते है। अकेले सल्फर जो पौधन में अपन दे रहे हैं उनके जो प्रमुख कार्य हैं बेसो ही हम अपन को बता दें। सल्फर भी यह का करत के पौधन में अमीनो जो अम्ल होते हैं उनको निर्माण कर देते हैं, जिससे दलहन फसलन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाते है। सल्फर नाइट्रोजिनेन को जो भाग है जो उनके दलहन फसलन की जड़न में गांठन को निर्माण करत, और जो नाइट्रोजन की मात्रा है ना ऊखा में भैया स्थिरीकरण में सहायक हो जाते है। सल्फर थायमीन और बायोटिन नामक विटामिन के निर्माण में जो है अपनो सहायक होते है। फसलन की जो जड़े हैं उनमें वृद्धि और विकास हो जाते है। उके अलावा सल्फर पौधन में रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होते है उखा बढ़ा देते है, जिसे कि अपनो पौधा रोगी नहीं बन पाऊ। प्याज और लहसुन की पैदावार सबसे ज्यादा होते है। तिलहनी फसलन में तेल की मात्रा बढ़ावे में जो सहायक है, और दलहनी जो फसलें हैं उनकी जो जड़न की ग्रंथियां हैं उखा भी पूर्ण तो विकास में कर देते है। तो इस प्रकार से अपन का सल्फर के महत्व के बारे में जानकारी भाई। बे पौधा जिनमें सल्फर की कमी है उनके कछु लक्षण सो ही हम अपन का बता दें। सल्फर की कमी से पौधन की ऊपरी नई पत्तियों में जो सराएं होती हैं उनके बीच के भाग हरे पीले रंग के हो जाते हैं, पौधन की वृद्धि रुक जात, और जो अपने पौधा को तना है ना भैया वो कड़ो हो जात, सख्त हो जात बिल्कुल। कपास और टमाटर जिन पंजन के लगे हैं उनके तना लाल रंग के हो जात, तो जो जान लो कि इसमें सल्फर की कमी है। यही प्रकार से आलू है, सरसों है, इनकी पत्तियां भी सिकुड़ सी जाती हैं और बिल्कुल तस्तरी प्याले नुमा हो जाती हैं। सल्फर की कमी से तिलहनी जो फसलें हैं उनमें तेल की मात्रा कम रह जाती है, और जो अपनी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़न की जो ग्रंथि है उनको विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। खासतौर से सोयाबीन के लाने जो सोयाबीन के पौधा की ऊपर की पत्ती है वे जो है धीरे धीरे करके पीली पड़ के इतने तक की पूरा पौधा तक उनको जो है पीलो पड़ जाते है, तो उनमें अगर अपन सल्फर को छिड़काव जरूर करें। धान

0: फसलन के पकवे में भैया जो है देरी होने लगत, प्याज और लहसुन की जो सुगंध होत उसमें तीखापन नहीं आता है, तो अपन का जो है सल्फर को प्रयोग जरूर करने हैं। ये बेरा खड़ी फसलन में सल्फर की कमी के लक्षण अगर दिखें तो अमोनियम सल्फेट के घोल को परणी छिड़काव अपन का जरूर कर देने हैं, इसे अपनी फसलन का जरूर लाभ होगा।
1: अभी किसान श्रोता सुन रहे थे खेती किसानी कार्यक्रम, विषय था पौध पोषक तत्व सल्फर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

0: अभी श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। गायक थे श्रीकांत पारगांवकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन।
1: आज की जीवन शैली में एक साधारण मनुष्य की चाह ये नहीं होती कि कोई उसे सामाजिक रूप से सम्मान दे या पूजे, या वो किसी भी महफिल या सार्वजनिक समारोह में आकर्षण का केंद्र बने। ऐसा मनुष्य सिर्फ सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन करता है। परिवार के लिए भरण पोषण करना, जो मिल गया उससे राम रहीम करना, और ज्यादा हुआ तो रिश्तेदारी का न्योता निभाना ही ऐसे मनुष्य के जीवन में होता है। लेकिन एक ऐसा मनुष्य जिसमें कोई एक विधा या गुण सबसे हटकर आ जाता है, वो निरंतर यही सोचता रहता है कि वो जहां भी जाए उसे सम्मान मिले, लोग उसे पूजे, उसे भारी भीड़ में भी विशेष स्थान मिले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उस व्यक्ति को काफी मानसिक कष्ट मिलता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि गुण पूजनीय तब बनते हैं जब मनुष्य के जीवन में विचार और आचरण का समन्वय होता है, और इसके लिए उसे कठोर साधना करनी होती है। लेकिन साधना क्या है? वस्तुतः किसी मार्ग को पकड़कर उस पर चलते जाना साधना नहीं है। धन, सत्ता और भोग के पीछे आंख मूंद कर दौड़ने वालों की संख्या आज कम नहीं है, और उनकी इस दौड़ को साधना नहीं कहा जा सकता। साधना सदा उच्च आदर्शों की उपलब्धि के लिए की जाती है। भगवान महावीर ने साधना की, गौतम बुद्ध ने साधना की, उन्होंने राजपाट का मुंह छोड़ा, घर बार का त्याग किया और सारे वैभव को ठुकरा कर उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसकी प्राप्ति के बाद पाने को कुछ भी नहीं रह जाता। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, आचार्य तुलसी जैसे महापुरुषों ने भी वही किया जो इतिहास में लोग करते रहे हैं। ये सब लोग स्वेच्छा से अकिंचन बने और जीवन के अंतिम क्षणों तक साधना के मार्ग पर अधिक निष्ठा और मजबूती से चलते रहे। इन युग प्रवर्तकों के स्मरण से आज भी श्रद्धा से मस्तक नत हो जाता है, क्योंकि अपने जीवन से उन्होंने बता दिया कि मूल्यों की स्थापना किस प्रकार की जाती है और अपने जीवन को किस प्रकार ढाला जाता है। भारतीय जीवन दर्शन का एक मंत्र है, सादा जीवन, उच्च विचार। सुनने में, पढ़ने में ये वाक्य बड़ा सरल लगता है, लेकिन वास्तविकता में उतना ही कठिन है, क्योंकि जीवन में अधिकांश बुराइयां इसी मंत्र की अवहेलना से होती हैं। सादगी और सात्विकता का चोरी दामन का साथ है। जिसमें सादगी का गुण है वो असात्विक कभी हो ही नहीं सकता, और ऐसा व्यक्ति सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। भारतीय संस्कृति गुणों की खान है। हमारे यहां हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य हर तरह से शुद्ध रहे, संयम से जीवन जिए, तप और साधना से आप अपने जीवन को चमका सकते हैं। भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा है कि कठोर साधना से आत्मा परमात्मा बन सकती है। गुणी मनुष्य सार को ग्रहण करते हैं और छाया को छोड़ देते हैं। जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता वही समाज में आदर के योग बनता है। गुण की सब जगह पूजा होती है। आज इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज मानव मूल्यों का पतन हो रहा है। भौतिक मूल्य चारों ओर छा गए हैं। नाना प्रकार की विकृतियों से मानव समाज और राष्ट्र आक्रांत हो गया है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपना जीवन सादगी और सत्यता से जिए, तभी हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। मीडियम लेवल पर ये आकाश

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरूआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and West Rajasthan. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अधिक समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। विश्व के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को हराया। अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक 4,399 दिनों का हो गया है। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 12 से 18 जून 2026 की अवधि में जिले के प्रत्येक विकासखंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे। तेलंगाना की अदालत में आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। भाजपा की शिकायत पर यह कार्यवाही राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी ने की है। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जानकारी छिपाई गई थी, यह एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्होंने एक्सेप्ट किया।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की बैठक भी होगी। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी

0: उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों तथा सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने फर्जी खातों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय, पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा और वसूली तंत्र, डिजिटल संचार प्लेटफार्मों का बेहतर प्रबंधन, डिजिटल प्रणाली में अधिक जवाबदेही, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी सुझाव दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। रंगिरी दम्बोला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से होगा। सभी मैच दम्बोला में खेले जाएंगे और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर की शासकीय संभागीय आईटीआई नंदानगर में 11 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी जिले में संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। शिवपुरी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के सफलतापूर्वक 6 साल पूरे होने के अवसर पर 1 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आगर मालवा जिले के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। देने के उद्देश्य से 12 से 18 जून तक विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 14 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विकसित हमारे शिक्षक ऐप प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर एवं प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी महक। आज इस श्रृंखला में हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी काव्य पाठ। कवि हैं मोहम्मद जावेद कुरैशी। तो आइए सुने इनकी काव्य रचनाएं।
1: आरजू करने से पहले सोच ले, आरजू करने से पहले सोच ले, जुस्तजू करने से पहले सोच ले, जुस्तजू करने से पहले सोच ले, खामियां दिख जाएंगी ये आईना, खामियां दिख जाएंगी ये आईना, रूबरू करने से पहले सोच ले, खामियां दिख जाएंगी ये आईना, रूबरू करने से पहले सोच ले, और जागते रहते हैं ये दीवारों दर, जागते रहते हैं ये दीवारों दर, गुफ्तगू करने से पहले सोच ले, गुफ्तगू करने से पहले सोच ले। एक मतलब दो शेर और समाप्त करें कि तू इतनी क्यों सफाई दे रहा है, तू इतनी क्यों सफाई दे रहा है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, और दरीचे खोल दो जहनों के सारे, दरीचे खोल दो जहनों के सारे, पयामे हक सुनाई दे रहा है, दरीचे खोल दो जहनों के सारे, पयामे हक सुनाई दे रहा है, मेरी बस्ती में एक आवारा बादल, मेरी बस्ती में एक आवारा बादल, समंदर की दुहाई दे रहा है, मेरी बस्ती में एक आवारा बादल, समंदर की दुहाई दे रहा है। एक मतलब दो शेर और समाप्त कर लें कि न पूछो मुझसे कि कलियों पे क्या गुजरती है, न पूछो मुझसे कि कलियों पे क्या गुजरती है, जब उनके जिस्म को छूकर हवा गुजरती है, न पूछो मुझसे कि कलियों पे क्या गुजरती है, जब उनके जिस्म को छूकर हवा गुजरती है, और अदब से चांद सितारे भी राह देते हैं, अदब से चांद सितारे भी राह देते हैं, जब आसमां से किसी की दुआ गुजरती है, जब आसमां से किसी की दुआ गुजरती है, वो कदम कदम पकड़े हैं यजीद के लश्कर, कदम कदम पकड़े हैं यजीद के लश्कर, हरेक जहन से फिर करबला गुजरती है, हरेक जहन से फिर करबला गुजरती है। और दो तीन शेर और समाप्त कर लें। अर्ज किया है कि फिक्र भी अब क्या करें सैलाब की, फिक्र भी अब क्या करें सैलाब की, बारिशें ही हो रही तेजाब की, बारिशें ही हो रही तेजाब की, और वक्त वो है जाल भी हम बेच दें, वक्त वो है जाल भी हम बेच दें, मछलियां तो बिक चुकी तालाब की, मछलियां तो बिक चुकी तालाब की, जिस्म अब खद्दर के आदि हो गए, जिस्म अब खद्दर के आदि हो गए, अब हमें हाजत नहीं कम ख्वाब की, जिस्म अब खद्दर के आदि हो गए, अब हमें हाजत नहीं कम ख्वाब की, और जब से कुछ दुश्मन हवारी हो गए, जब से कुछ दुश्मन हवारी हो गए, बढ़ गई बेचैनियां अहबाब की, जब से कुछ दुश्मन हवारी हो गए, बढ़ गई बेचैनियां अहबाब की, और छानता छानता हूँ रोज सागर की तहें, छानता हूँ रोज सागर की तहें, जुस्तजू में गौहरे नायाब की, छानता हूँ रोज सागर की तहें, जुस्तजू में गौहरे नायाब की। और एक गजल के चंद अशार समाप्त कर लें। अर्ज किया है कि सारे अरमा दिल के अंदर रखे हैं, सारे अरमा दिल के अंदर रखे हैं, इन कब्रों में कितने सिकंदर रखे हैं, इन कब्रों में कितने सिकंदर रखे हैं, और पहले ये बतलाओ फिर तुम जश्न करो, पहले ये बतलाओ फिर तुम जश्न करो, कितने नेजे थे कितने सर रखे हैं, पहले ये बतलाओ तुम फिर तुम जश्न करो, कितने नेजे थे कितने सर रखे हैं, और जाने कब ये वक्ते हिजरत आन पड़े, जाने कब ये वक्ते हिजरत आन पड़े।

0: बांध के हमने बिस्तर विस्तर रखे हैं, बांध के हमने बिस्तर विस्तर रखे हैं, और पानी है कि ऊपर को आता ही नहीं, पानी है कि ऊपर को आता ही नहीं, कौवे अब भी चोंच में कंकर रखे हैं, पानी है कि ऊपर को आता ही नहीं, कौवे अब भी चोंच में कंकर रखे हैं, और नदियों पे इल्जाम तो नाहक आता है, नदियों पे इल्जाम तो नाहक आता है, अपने हक की प्यास समंदर रखे हैं, नदियों पे इल्जाम तो नाहक आता है, अपने हक की प्यास समंदर रखे हैं, और तुम भी अपनी आहोजारी बंद करो, तुम भी अपनी आहोजारी बंद करो, हम भी तो हैं दिल पे पत्थर रखे हैं, तुम भी अपनी आहोजारी बंद करो, हम भी तो हैं दिल पे पत्थर रखे हैं। और एक गजल के चंद अशआर और समाप्त कर लें कि रात खोले रही खिड़कियां देर तक, रात खोले रही खिड़कियां देर तक, चांद करता रहा शोखियां देर तक, रात खोले रही खिड़कियां देर तक, चांद करता रहा शोखियां देर तक, कल समंदर से सूरज की बातें हुई, कल समंदर से सूरज की बातें हुई, फिर बरसती रही बदलियां देर तक, कल समंदर से सूरज की बातें हुई, फिर बरसती रही बदलियां देर तक, लड़कियों तितलियों में यही फर्क है, लड़कियों तितलियों में यही फर्क है, गुल पे रुकती नहीं तितलियां देर तक, लड़कियों तितलियों में यही फर्क है, गुल पे रुकती नहीं तितलियां देर तक। और ये भी सोचो कि दरिया से होकर जुदा, ये भी सोचो कि दरिया से होकर जुदा, जी ही सकती नहीं मछलियां देर तक, ये भी सोचो कि दरिया से होकर जुदा, जी ही सकती नहीं मछलियां देर तक। बादलों ने पहाड़ी कसीदा पढ़ा, बादलों ने पहाड़ी कसीदा पढ़ा, गुनगुनाती रही वादियां देर तक, बादलों ने पहाड़ी कसीदा पढ़ा, गुनगुनाती रही वादियां देर तक। और जब दरख्तों पे मौसम के फल आ गए, जब दरख्तों पे मौसम के फल आ गए, बोझ सहती रही डालियां देर तक, जब दरख्तों पे मौसम के फल आ गए, बोझ सहती रही डालियां देर तक। और चढ़ते सूरज को एक दिन जवाल आएगा, चढ़ते सूरज को एक दिन जवाल आएगा, सबकी रहती नहीं दिल्लियां देर तक। और जेब की वसअतों से जो बाहर हुई, जेब की वसअतों से जो बाहर हुई, भूख तकती रही रोटियां देर तक, जेब की वसअतों से जो बाहर हुई, भूख तकती रही रोटियां देर तक। गजल के चंद अशआर और समाप्त कर लें। अर्ज किया है कि जब तेरी यादों की गर्दिश होती है, जब तेरी यादों की गर्दिश होती है, आंखों से फिर खून की बारिश होती है, आंखों से फिर खून की बारिश होती है, और कितने जतन और क्या क्या कोशिश होती है, कितने जतन और क्या क्या कोशिश होती है, तब उनकी पलकों में जुम्बिश होती है, तब उनकी पलकों में जुम्बिश होती है, और खूने दिल लफ्जों को पिलाना पड़ता है, खूने दिल लफ्जों को पिलाना पड़ता है, तब जाकर अशार की बंदिश होती है, खूने दिल लफ्जों को पिलाना पड़ता है, तब जाकर अशार की बंदिश होती है। और मैंने तुझको मांगा तो पुरखाम है क्या, मैंने तुझको मांगा तो पुरखाम है क्या, ये तो हर बीमार की ख्वाहिश होती है, ये तो हर बीमार की ख्वाहिश होती है। और जब हालत मामूल पे आने लगती है, जब हालत मामूल पे आने लगती है, फिर उनकी तखरीब की कोशिश होती है, फिर उनकी तखरीब की कोशिश होती है, और दोस्त उसे अखबार बनाने लगते हैं, दोस्त उसे अखबार बनाने लगते हैं, जब हमसे थोड़ी सी लग्जिश होती है, जब हमसे थोड़ी सी लग्जिश होती है, और नींद की सूरत आंखों में आ भी जाओ कि एक और गम की इब्तिदा न करे, एक और गम की इब्तिदा न करे, उससे कह दो यहाँ रुका न करे, एक और गम की इब्तिदा न करे, उससे कह दो यहाँ रुका न करे, भूल जाते हैं रास्ता राही, भूल जाते हैं रास्ता राही, मुस्कुराते हुए चला न करे, भूल जाते हैं रास्ता राही, मुस्कुराते हुए चला न करे, वो अगर दोस्त है तो साथ रहे, वो अगर दोस्त है तो साथ रहे, वो अगर दोस्त है तो साथ रहे, इस तरह हमसे फासला न करे।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक श्रृंखला में हिंदी काव्य पाठ, कवि थे मोहम्मद जावेद कुरैशी। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी

श्रोताओं, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम रहे ना रहे से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। कैफी आजमी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है बक्की लहरी ने।

ये आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत लिखा था कैफी आजमी ने और धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने। फिल्म थी हम रहे ना रहें।

0: दीप, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: लीजिए अब सुनिए SH बिहारी की गीत रचना संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के संगीत निर्देशन में। इस गीत को आवाज दी है शब्बीर कुमार ने। फिल्म है प्यार किया है प्यार करेंगे।
1: कोई मौसम न बदले जब

0: अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म प्यार किया है प्यार करेंगे का ये गीत। एसएच बिहारी की शब्द रचना को आवाज दी थी शब्बीर कुमार ने।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: लीजिए आप सुनिए राजेंद्र कृष्ण की गीत रचना मोहम्मद रफी और मन्ना डे के युगल स्वर में। तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम सच्चाई।

0: फूलों की सेजों पर झूठे को आराम न आए लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त
0: ऐ दोस्त ऐ दोस्त मेरे मैंने

का तारा चमका, सबने बढ़कर उसका साथ दिया। गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

0: मजा कुछ और ही है, देख कर आई आग में जलकर इसका मजा कुछ और ही है।
1: ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

0: दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है।
1: श्रोता, ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म थी सच्चाई। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। लीजिए अब सुनिए अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म नाकाबंदी में। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने, तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म नाकाबंदी में। अनजान की शब्द रचना थी, संगीतकार थे बप्पी लहरी। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के संगीत निर्देशन में। इस गीत को आवाजें दी हैं मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक ने। फिल्म है अजूबा।

0: अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक के युगल स्वर में। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था फिल्म अजूबा के लिए। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है प्रतीक्षा कीजिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात के लिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन

0: और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन

0: के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से

0: भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
3: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोह मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघचीव ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
2: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
2: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push, new framework under Viksit Bharat G. Ramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla.

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता। इसकी आपने सुनी 14वीं कड़ी। शीर्षक था गुणत्रय विभाग योग। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा से। आवाजें थी अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की। समीर की शब्द रचना को संगीत से सवारा था अनु मलिक ने। लीजिए आप सुनिए धड़कन फिल्म का ये गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन से। इस गीत को आवाजें दी थी अभिजीत और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत से सवारा था संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेब पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं लोकरंग कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। इस समय आप सुनते हैं लोकरंग कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आल्हा गायन। कलाकार हैं प्रवीण कुमार। प्रसंग है भुजरियों की लड़ाई। तो आइए सुने आल्हा गायन प्रवीण कुमार के स्वर में।

युद्ध वीर जाहिर भयो हदस राज कौलाल जाके बल निर्भय धरन सुराज कियो परमाल तो सुम

तलौना मगर माहुआ कत जा ब्रह्मा के बजी तरवार सुर महेश गौरी सुमंत्र शारद को सिरनाय और लघु भारत कलमा भयो नगर महुबाया।

ग्रंथ बनाए और बीरन के वृद्धावली सो सब कहीं हो समझाए। सावन समया संभरी हो करो महोबाया है अवाल है बुद्ध सामंत दो कनवज गए रसाए। तो माहिल ने पाती लिखी ऐसा सर पाए और समया

कर दैती माहेल नया लाबू दल दे निकार तो दूसर चुगली कर दे माहेल ने पृथ्वीराज के कान फूक दे जा की सुन महोबा परमाले का। अब सुन महोबा परमाले का अपने लैल पुराने दाव अब नहीं अब इंदुला का चल भैया ना सिरसा का मर्द मलखान

0: राम।
1: तो मारू बाजे दरवाजी माँ एकदम खेरी सार यर्रा अब करा तैयारी गल महबा के बीते घरी घरी परिवार। तो एक तो चौड़ा हुई से जालिम या मुंह पाऊ बाद सा क्यार। तो वैसी जवानन का ललकार भैया सा

ले अमर नहीं है को दुनिया माँ कौन आवाज मरे को काल लेता तेजारन मामर जई हद को मर घटा फूंक दे जाय और लड़के जू जो सामर भूम मत साखा जोगन जोगन लग जाय तो करा तैयारी गड़ महुआ के अब ना करा देर के काम हो जीत के यही हागल महुआ से दूनी दई हो तलब बढ़ाए तो दे दे पानी अब जवानन का गढ़ दिल्ली में करे तैयार सूर गिनाऊ फौ सजाऊ तो सहरा यार बहुत बढ़ जाए सहरा मगाओ जात कि 7 लाख से चढ़ो पथौरा और दिल्ली का शब्द वेद चौहान लेकिन हमारे चंद्रवरदाई ने गणना लिख दई है बादशाह क्यार कि 7 लाख से चढ़ो।

लागे हुए कूहे कर सूर निरख दल जाता बाजे। अरे झंप गयो वसवान रब कंपत चौदा भवन हो दसो दिशान यान खलबल परी जब कौपे करो सोने सुमन। तो गजर बाजा थवा दे साहे का धरती का।

कै कछुक दिना कै और महुआ धोरा दाबगा जाए तो गेर महुआ के मेलो है दिल्ली का शब्द वेद चौहान। तो पत्र लिखा थे परमाले का और महुआ का लिखे हवाल कहा लिखो पत्र में लिखो नौ लका हार और घोड़ा हर नांगर पन्ना रतन खदान सपरे का कीरत सागर लिखो मलन दे हार या भूषण पारस मणि और डोला लिखत है चंद्रा बलका सो लिख दीनो शंबर धनी। तो ऐसी पाती लिख के बादशाह ने और बंदे लिफाफा मा करवाए दई हवा पन दे थे छाप लगवाए एक नौकर का बुलाए के और नजराना दीनो धनी चौहान। तो या नहीं कि नजराना में रुपया पैसा लगत

तेरे केले अरसा माँ पूछा गावो किरतुआ क्या तो क्या छो वरना अब ताला के मोहतारीफ करी ना जाए जा घाट मनोहर बने सुहावन सपर रहो जा नर नारी अब उपमा मोसे करत बने ना कीरत सर के छब न्यारी जा पढ़ो पा सुहावन लागे बरन बरन पंकज फूले और मधुपले ने अब बृंद बिंद कर मधुर फले मधुकुर भूले जा चक चक ही अब चातक बोले मद मस्त मयूर।

दादा दोल सिंधो ने सुना मैं बेत पड़े जा ब्रह्मचारी ओ उपमा मौसे करत बने ना कीरत सर के छवन्यारी ओ पार छाड़ दे सर कीरत के की बस्ती है लुचंदेला क्यार तो क्या छोवर नवा बस्ती के कुछ तारीफ करी ना जा जा कंकर पत्थर के धरती है जा कंकर पत्थर के धरती है महोबा शहर बनो गुलजार जा खोरन खोरन।

के लोर करे चा घर मत बांदर हु कयाम कैडार और रैयत रे जाके द्वारे मां दो दे काला सोवरन क्यार तो ज्यादा गावे कौन बढ़ावे बर्था समय करे वर।

करम लगो दरबार जा जवान जवान से रंग रंग से अब रो बैठ जवान मां जवान जा ढालन धरती वहां करिया तो ड्योढ़ा लगो से रोही प्यार जमर मोट मऊ हर बोलत हूं कह हाव हाव करनाल जब जय घंट ब्याला भेवा जय ऊपर गरुण पंख यार राजा लय के खट।

करते हाथ मुचा सिंहासन जा पर बैठ राजा परमाल। तो क्या छो वर्ण होवा बंगला के मोतारी करी ना जाए। छोले के पाती अब नौकर ने हर एक नौकर का दी थे गहाय। तो हाथन हाथन पैगा परवाना।

ती बादशाह के और धीरे से गदियन मा लेत है दवाए तो बट सामने या ब्रह्मा तो जब ना हर कह परी नंगाए कौन देश से पाती आई कह गदिया मा लई दवाए तो ले परवाना पृथ्वीराज का यो ब्रह्मा का दीन बौकाए तो खोल कपाती ब्रह्मा बाँचे आंख नजर कर जा की आग लाग जा तोरे पत्र मा महुआ तोर भाण मा जाए और कहे लाग कहते चुगला के रे पाले हंस दे बुड़वाए जो हो तो बेनुला का चल भैया तो दाव

रानी मलहना का है ब्रह्मा से की बेटा, और रक्षा कर ले महोबा क्यार, तो ना ही कर दे ब्रह्मा कुंवर ने, तो रानी मलहना के सुनिए बयान, भोजा पकड़ के बिटिया चंद्रावल का, हो ब्रह्मा से लागी बतान, कि बेटा रक्षा नहीं करे काया है जो आज महुआ कहे, तो बेटा सुन ले लड़लवा मार, अपने चढ़त का घोड़ा दे दे और अपने बांधत का तरवार, और जितना लुआ हो गढ़ महुआ का सब दे जी माँ दिया तुम उठाए, पर डोला ले जाए अपनी बहन का और पृथ्वीराज का सौंप दे जाए, तो उदल के निकल जाने का गुस्सा ब्रह्मा को भी था, हर नहीं ब्रह्मा ने दीनो जवाब, अंग अंग फड़कन लगे और चमकन लगी कृपान, और माता पद रज शीस धर बोलो बचन विद्यमान, अरे जननी आयस दीजिए धरो हाथ रण पाए, और कितनी कला चौहान की भेंटो जाए, रानी अतलख ब्रह्म को रण उद्यत मम चाओ, भुजा पकड़ आयस दई सुबाढ़े अमत वराओ, रानी बानी यम कही सुनिए वीर दमान, हो नगर राजधानी करो मारो खेद चौहान, दमक के री सातने दमक उठो है रंग, अंग अंगन में भुजंग फन तान है, तान कही रसना सो जो मैं परमाल लाल, तो महुआ मा दसन ना देव चौ, बोला सूर सब सभा कही ब्रह्मा सो बानी, और कर बे धरा सो तंत्र राखबे भारत पानी, राज बल खाते हाथ से राज गमाबे, ओ हल्दी घाटी रंग सुयस रादरसाब, जय ब्रजेश हर हर जपत भुजबल लाल कमान है, ओ लेन संके अर्दल चलो सो ले पान दिमान है, अवनी के मन से ले आज्ञा दे दे।

मलना का है कि बेटा बिना बिंदला के चल भैया बिन, और नैया नया ही लगे का पार, चल चलिए देवता पूजिए गढ़ महुआ का, जो सकरे माँ हो सहार। तो यहाँ तो रानी मलना की तैयारी मनिया देव की पूजा के लिए, और यहाँ ब्रह्मा का तो जगनायक से, ओ भैया मोरे वृतिया राव, दूत बदा ब्रह्मा करी असुरो पाए पहराए, और जगनक को आए।

पत्र लिखो ब्रह्मा कुंवर ने पृथ्वीराज का कि हमें तुम्हें घमसान है और सजय शंभरी वार और जो ना करत समर तो धामन कहते सुनाए। और लिखो पाछे का कि मैं तो ब्याह हो हूं गल दिल्ली मां और जो दूसर कन्या हो पृथ्वीराज के रेता मोरे।

ऐसा पत्र लिखो ब्रह्मा कुंवर ने और नौकर का दीनों गहाय। जिस समय पत्र पाओ ब्रह्मा का पृथ्वीराज ने तो सालट मादन को धनी चौहान तो सब लजगर का

परगा खजुआ गमा को बैरागी ताल का जाए कोनो परगा मदन ताल मा को दे दुआरे परो मेहमान गेर महोबा के मेलो है ले गेर महोबा के मेलो है दिल्ली का शब्द वेद चौहान गजर बाजे बादशाह का बंधना डोल किरतुआ क्या हो यहाँ तैयारी रानी मलना कहे हो देवता पूजे का हो तैयार ब्रह्मा जगन के दोनों बहादुर सजे महवाम और कछु सिपाही सातमा हम मंदिर का सजे गए चंदेल नार तो जब गैस बिजली ना चलत रहा हो भपकन के रहो उजियार तो जरूरत मसाले ले चलिया।

अब जागा मा और फिर के दंद को धनी चौहान चंद वरदाई से दीन हो जवाब की महाराज की तो महोवा माया गी लाग गए और निमहोवा से भागो जात है परमाल। ये कैसा उजेला दिखाई दे रहा है। तो चंद वरदाई ने दीन हो जवाब की महाराज ना तो महोवा माया गी लागिया है और न महोवा से भागो जाता परमाल। मनिया देवता की अब पूजा को और रानी जाती महोबा क्यार देवता बरम्बू हो जा जो मंदिर मा तो कनवज मा दई है डाक पहुंचाए तो अब

ठटको अप्पा छेका पाछे का रुकु बिरतिया राव। ब्रह्मा सोचे क्या बात, पुरुष बलि नहीं होता है और समय होते बलवान, और भीलन लूटी गोपका वही अर्जुन वही बाण। एक दिन कृष्ण चंद भाग जाते आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ देत क्षण मां। एक दिन अर्जुन दसौ दशाएं जीत लेत, और एक दिन भीलन ने लूट लियो बनमा। एक दिन राम मुड़ के काल बंधो पाटी से, और एक दिन दसो शीश कटे डरे रणमा। कहते अलख राम मानुष के चला भय कौन, और सूरज की कलाएं तीन होती एक दिन मा। आज समय बगर का गढ़ महुआ का, और चौड़ा दावे रहो है दिखाए। जल में जुगादन के थापे देवता, और गाने धर ले चौड़िया राव। यही सोच कर ब्रह्मा कुंवर ने, और चौड़ा का जवर दई ललकार। है चौड़ा तन

अभी आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम में प्रवीण कुमार के स्वर में आल्हा गायन। प्रसंग था भुजरियों की लड़ाई।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंतराल के पूर्व लोकरंग कार्यक्रम में आल्हा गायन। कलाकार थे प्रवीण कुमार। इसी के साथ लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है कुछ कुछ होता है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं 1990 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है की। ये एक एवर ग्रीन फिल्म है। जब जब बेहतरीन फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें कुछ कुछ होता है फिल्म का नाम जरूर शामिल होता है। फिल्म को रिलीज हुए लगभग 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म का जादू वैसे ही बरकरार है। इस फिल्म को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसे रिलीज किया गया 16 अक्टूबर 1998 को। आपको कुछ और भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस गीत की तरफ रुख करते हैं, जो इसका शीर्षक गीत है।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था संगीतकार जतिन ललित ने। फिल्म थी कुछ कुछ होता है और आज हम इसी फिल्म के बारे में आपसे कुछ रोचक तथ्य साझा करेंगे। श्रोताओं, बात करें इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, अनुपम खेर, सना सईद, जॉनी लीवर, फरीदा जलाल, रीमा लागू, हिमानी शिवपुरी, अर्चना

पूरन सिंह, मनीष मल्होत्रा, नीलम कोठारी, फरहा खान और गीता कपूर। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया करण जौहर के पिता यश जौहर ने और इसका संगीत दिया संगीतकार जोड़ी जतिन ललित ने। श्रोताओं, इसके सभी गाने इतने लोकप्रिय हुए कि जो आज भी सदाबहार गीतों में शुमार हैं, जिन्हें लिखा था गीतकार समीर ने और इन गीतों को अपने सुरों से सजाया उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, मनप्रीत।

0: के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके थे और उनकी उस समय उम्र लगभग 27 वर्ष थी। और ये रोचक बात हम आपसे साझा कर रहे हैं कि इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान के दोस्त का छोटा सा रोल भी निभाया था। करण जौहर ने इस फिल्म के बाद 2001 में कभी खुशी कभी गम, 2006 में कभी अलविदा न कहना, सन 2010 में माई नेम इज खान, 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर को भी डायरेक्ट किया। कुछ बातें आपसे और भी होंगी लेकिन इस गीत के बाद सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन ठहरते हैं इस अल्प विराम के लिए।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी की शुरुआत में ही हम राहुल यानी शाहरुख खान और टीना यानी रानी मुखर्जी के कपल को देखते हैं, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी होती है, लेकिन डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने से डॉक्टर कहते हैं कि टीना अब नहीं बचेगी। ये बात सुनकर राहुल बहुत दुखी हो जाता है। इसी बीच राहुल और टीना अपनी बेटी का नाम अंजलि रखते हैं। टीना अपनी सास को कुछ लेटर्स यानी खत देती है और ये

इच्छा प्रकट करती है कि ये लेटर उसकी बेटी को दिए जाएं, जिन्हें पढ़कर उसकी बेटी उसके मन की बात यानी उसकी इच्छा को जान और समझ सके। इसके बाद टीना दुनिया छोड़कर चली जाती है और इसी क्रम में साल दर साल बीत रहे होते हैं और अंजलि 8 साल की हो जाती है जब उसे उसके जन्मदिन पर उसकी माँ के लेटर दिए जाते हैं, जिन्हें पढ़कर वो अपने पिता और बाकी लोगों से बहुत कुछ जानने की कोशिश करती है। अंजलि के लेटर पढ़ने के साथ कहानी कुछ पीछे की तरफ जाती है, जिसमें टीना ने राहुल और टीना के कॉलेज के बारे में लिखा होता है, जिसमें हम पाते हैं कि राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड अंजलि हुआ करती थी, जो एक दूसरे के साथ एंजॉय करते, शरारत करते और बास्केटबॉल भी खेलते। इसमें अंजलि अक्सर जीतती थी और राहुल जीतने के लिए चीटिंग करने की कोशिश करता, जिस पर दोनों में खट्टी मीठी नोकझोंक भी होती। इसी बीच उनके कॉलेज में टीना की एंट्री होती है, जो कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी होती है, जिसे देखकर राहुल उसे मन ही मन पसंद करने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन टीना उसे इम्पोर्टेंस नहीं देती है। आगे क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

0: बन जाते हैं और समय वक्त की रफ्तार में बहते हुए राहुल और टीना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी दौरान अंजलि को भी राहुल के लिए भावनात्मक लगाव महसूस होने लगता है और अंजलि को ये एहसास तब होता है जब वह राहुल और टीना की नजदीकियों को देखकर हैरान और परेशान होती है। लेकिन ये सारी बातें खुले तौर पर तब जाहिर होती हैं जब राहुल अंजलि से टीना को पसंद और प्रपोज करने की बात करता है, जबकि अंजलि भी अपने मन की बात राहुल से कहना चाहती है, लेकिन वह राहुल की बात सुनकर दुखी होने के बाद खुद को पीछे कर लेती है और अंजलि अपने घर जाने लगती है। तब उसे राहुल और टीना बहुत रोकते हैं, लेकिन अंजलि नहीं रुकती और टीना अंजलि की आंखों की नमी और उदास चेहरे को पढ़ लेती है और ये समझ जाती है कि अंजलि भी राहुल को पसंद करती है और टीना को इस बात का दुख होता है कि वह अनजाने में ही सही राहुल और अंजलि के बीच आ गई। कई साल बीत जाते हैं। राहुल और टीना की शादी के बाद दोनों अपनी बेटी का नाम अंजलि रखने का फैसला लेते हैं और इसी कारण टीना अपनी मौत की बात जानकर अपनी बेटी अंजलि से राहुल और अंजलि को मिलाने की आखिरी इच्छा अपने खतों के जरिए प्रकट करती है, जिसे जानकर छोटी अंजलि अपनी हर कोशिश और अपनों की मदद से राहुल यानी अपने पिता और अंजलि को एक दूसरे से मिलवाकर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग करते हैं। श्रोताओं, इस मामले में इस फिल्म की रोचक बात एक ये भी है कि इस फिल्म के लिए टीना के रोल के लिए ट्विंकल खन्ना के नाम पर सबसे पहले विचार किया गया था। उसके बाद ऐश्वर्या राय, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, उर्मिला मातोंडकर, करिश्मा कपूर को भी प्रस्तावित किया गया, लेकिन आखिरकार रानी मुखर्जी इस अभिनय के लिए चुनी गईं। हम आपको बता दें कि रानी मुखर्जी की उम्र उस समय केवल 18 वर्ष की थी और सलमान खान ने इस फिल्म के लिए अपने पिता और करण जौहर के पिता की मित्रता के नाते स्वयं काम करने के लिए प्रस्ताव रखा और उन्होंने इस फिल्म में 12 दिन काम किया। श्रोता, इस फिल्म की बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट था 10 करोड़, भारत में इसका कलेक्शन रहा 46 करोड़ 86 लाख और वर्ल्ड वाइड में 106 करोड़। ये फिल्म पैसे कमाने में टॉप 5 फिल्मों में सबसे पहले पायदान पर रही, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए, लेकिन उससे पूर्व ये अंतराल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, छोटी अंजलि को अपनी माँ के खतों के जरिए ये पता चलता है कि तीनों कॉलेज में एक दूसरे के कुछ समय बाद अच्छे दोस्त

0: इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अपने मित्र उर्मिला यादव को नमस्कार। मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है प्रतीक्षा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित जिले की चिट्ठी की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिले में पारा 43 से 44 डिग्री होने के बाद अब तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो रही है, तो वहीं गर्म हवाओं की जगह धीरे धीरे उमस अपना स्थान ले रही है। खेती के नजरिए से ग्रीष्मकालीन मूंग खेतों में तैयार होकर अंतिम दौर में है, वहीं किसान कटाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के अंतर्गत वर्तमान सत्र के लिए ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन जारी है। उप संचालक कृषि मोरिस नाथ ने बताया कि मूंग और उड़द के लिए तहसीलवार कुल 46 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मूंग के 13,000 से अधिक और उड़द के लिए 14,000 से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। जिले में किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति का आकलन करने हेतु व्यापक स्तर पर मृदा नमूना संग्रहण कार्य किया गया है। नरसिंहपुर जिले में कुल 4,400 मृदा नमूने संग्रहित किए गए हैं। मृदा परीक्षण के माध्यम से भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन कर किसानों को उनकी भूमि के अनुरूप उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह प्रदान की जाती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले से प्रदेश के 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में योजना की 36वीं किश्त के रूप में 1835 करोड़ रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 296 करोड़ 34 लाख रूपये लागत के 40 विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान नरसिंह की ये भूमि वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और पराक्रम की साक्षी रही है। नरसिंहपुर जिला गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। वहीं गाडरवारा की तुअर दाल देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। पिछले दिनों नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित जलसंवाद कार्यशाला में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वैश्विक जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जल को बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ बचाया जा सकता है। उन्होंने प्राकृतिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए भूजल भरण की विशिष्ट तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। पिछले दिनों पीएम श्री शासकीय कन्या नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काटरवारा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि धरती का आंचल हरा भरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक यादगार पल है और एक मौका भी है। आज के दिन हम संकल्प लेकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधा जरूर लगाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य

आयुक्त कानून को ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मानवाधिकारों से जुड़ी योजनाओं क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन शिविर का आयोजन नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर में किया गया। शिविर में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के असंगठित क्षेत्र के कार्यरत श्रमिकों को योजना में पंजीयन कर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश की खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अभिनव पहल पर जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के माध्यम से जिले के विकास से संबंधित सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा उनके स्वास्थ्य स्वावलंबन और अधिकारों से जुड़े विभिन्न गंभीर मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई स्टोर रूम मदर रेस्ट रूम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: वहीं आप सुन रहे थे नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं आपका आपके अपने प्रोग्राम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन में। मैं हूं मनोज सक्सेना और बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। आपको याद है ना, पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि अगले कार्यक्रम में हम किडनी पर बात करेंगे। डायबिटीज के कारण किडनी पर क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं, आइए इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि डायबिटीज से किडनी को किस तरह से नुकसान होता है।
1: देखिए, ऐसा है कि मधुमेह में हमें खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज शुगर लगभग 7% रखना है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। कारण ये है कि ये मूलभूत बात लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों रखना है? क्योंकि इसका बुरा असर पड़ता है, जो शोधों में आया है, जो कि सीधा सीधा है, बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो आंखों के पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, गुर्दे में डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है और पैरों में न्यूरोपैथी होती है। तो ये तीनों ही चीजें अपने आप में विकट परिस्थिति है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो कि किडनी हमारी शरीर की, जो देखा जाए तो एक छन्नी है जो शरीर की सारी गंदगी को छान देती है और जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। तो मान लीजिए अगर किडनी को तकलीफ हो गई, छन्नी ने काम करना बंद कर दिया, तो विषैले तत्व तो शरीर में जमा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर आपको तकलीफ देंगे। आपका व्यवहार अंतर आएगा, शरीर में पानी रुकेगा और दूसरी प्रॉब्लम आएगी, यूरिया क्रिएटिनिन आपका बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए डायबिटीज के मरीजों में, जब भी डायबिटीज का मरीज आता है, टाइप 2 डायबिटीज का, तो उसे तुरंत उसी समय हम स्क्रीन करते हैं पेशाब में माइक्रो एल्बुमिन नाम के प्रोटीन का। तो ये माइक्रो एल्बुमिन नाम का प्रोटीन नॉर्मल आदमी में 30 के अंदर होता है। जब भी ये 30 और 300 के बीच में आता है तो हम इसको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया कहते हैं, और उसके आगे जब 300 के ऊपर हो जाता है तो वो मैक्रो एल्बुमिन यूरिया होता है। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी समय समय के हिसाब से बदल जाती हैं, पर मोटे तौर पे ये अंदेशा बताता है कि आपके गुर्दे अब खराब होने वाले हैं।
0: सर, इतनी गंभीर यह समस्या है कि जो भी डायबिटिक व्यक्ति है वह हमेशा ये मन में लेकर चलता है कि मेरी अब किडनी खराब हो ही जाएगी, क्या वाकई ऐसा है?
1: देखिए, अच्छा नियंत्रण जो है वहाँ पे आपके जीवन की खुशियाँ छिपी हुई हैं। अच्छा नियंत्रण अगर आप लेते हैं, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर रखते हैं, नियमित

0: डॉक्टर को दिखाते हैं, संयमित भोजन करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि किसी भी प्रकार से गुर्दे में कोई तकलीफ होगी। और आप अच्छे डॉक्टर हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो निरंतर नियम से समय समय पे आपकी गुर्दे की जांच करके देखेंगे। जब भी खराबी आएगी तो वो आपको आगाह करेंगे कि भाई संभल जाओ, दर्द की गोली मत लो, हरे पन्ने की गोली मत लो, पीले पन्ने की गोली मत लो, अपने मन से दवा मत लो, और शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर गुर्दे में पथरी है और डायबिटीज है तो और ज्यादा सतर्क हो जाइए, पथरी का इलाज समुचित करवाइए, क्योंकि पथरी के कारण भी गुर्दा खराब होगा, डायबिटीज के कारण भी गुर्दा खराब होगा, इन्फेक्शन होगा उसके साथ साथ, तो चीजें बहुत विकट होने लगती हैं।
1: सर, इलाज की हम बात करते हैं।
0: सबसे पहला इलाज है कि आप शुगर बिल्कुल जैसा किताबों में लिखा है वैसा नियंत्रित करें
1: जी।
0: दूसरा इलाज ये है कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ब्लड प्रेशर की कुछ गोलियां होती हैं, वो दी जाती हैं समुचित मात्रा में, एक योग्य डॉक्टर को वो लिखने दीजिए। तीसरा इलाज ये है कि डॉक्टर ये देखें कोई ऐसा और कारण तो नहीं है जिसके कारण गुर्दा खराब हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि मधुमेह के कारण हो रहा है, कहीं ब्लड प्रेशर के कारण तो नहीं हो रहा, अगर है तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करें, किसी इन्फेक्शन को अगर है इन्फेक्शन तो उसको नियंत्रित करें। तो इस तरह से विवेचना करने पे सही दिशा में इलाज होता है और गुर्दा प्रत्यारोपण की नौबत नहीं आती।
1: हमारे एक श्रोता है, उनका नाम है रीति निगम। उन्होंने अभी अपना पथरी का ऑपरेशन कराया है लेकिन पथरी में उनकी किडनी पर थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, क्या वह डायबिटिक होने की संभावना है उनको?
0: देखिए, पथरी होने से डायबिटीज नहीं होगा, पर ऐसा हो सकता है कि उनको साथ में दो बीमारियां हों। अगर उन्हें मधुमेह भी है और पथरी की समस्या भी है, मधुमेह भी अनियंत्रित है तो पथरी की समस्या, पथरी से होने वाला इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वो इन्फेक्शन बढ़ेगा तो हालांकि वो पथरी के कारण हुआ है पर मधुमेह उसमें घी का काम करेगा, तो अगर वो आग तेज होगी तो दोनों ही अंगों को जलाएगा वो।
1: श्रोताओं, हमारा लक्ष्य यही है कि हम आपको छोटी छोटी इन समस्याओं से आगाह कराते रहें। आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई परिवर्तन दिखता है जो असामान्य है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के जाने माने सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन्स रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। अगले कार्यक्रम में हम फिर इस तरह की बातचीत आपको जरूर सुनवाएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर सचिन चित्तावार का नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। मीडियम वेब पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र। प्रस्तुत है सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कन्नड़ भाषा का गीत, तो आइए सुने ये प्रशिक्षण पाठ। आज इस कार्यक्रम में हम सीख रहे हैं कन्नड़ भाषा में एक गीत। गीतकार श्री दद्दरंगी गौड़ा, संगीत निर्देशिका श्रीमती इंदु विश्वनाथ। इसे गा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु के विद्यार्थी। गीत का भाव इस प्रकार है। भावात्मक एकता को सीखने के लिए महाविद्यालय है प्रकृति। सूर्य और चंद्र उदयास्त में कभी अपना क्रम नहीं तोड़ते, ऋतु परिवर्तन क्रमानुसार चलते हैं। पेड़ पौधे मानव से न कुछ मांगते और न आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पशु पक्षी आश्रितों को धोखा नहीं देते। इस महान प्रकृति को देखकर मानव ने कुछ नहीं सीखा। धरती आसमान को देखकर हम सब सीखें और सुखी जीवन बिताएं। इस गीत को गाने के लिए बच्चों, आपको तो साहित्य चाहिए ना? चलिए पहले मैं आप सबको इसका साहित्य बताऊंगी, बाद में गाना शुरू करेंगे। तो सब लिखने के लिए तैयार है ना?
3: हाँ तैयार है।
2: इस गीत में एक पल्लवी, एक अनुपल्लवी और तीन चरण हैं।
4: वान सूर्य तड़वागेंदु हुट्टुवुदिल्ला, बेसरवेंदु मध्याह्नक्के मुळुगुवुदिल्ला।
2: अनुपल्लवी इस प्रकार है।
4: चौति चंद्र हुण्णिमेयन्नु तोरुवुदिल्ल, हुण्णिमेयेंदु अमावास्ये आगुवुदिल्ल। चौति चंद्र हुण्णिमेयन्नु तोरुवुदिल्ल, हुण्णिमेयेंदु अमावास्ये आगुवुदिल्ल। सोमारी मनुज होत्तिगे मुंचे एळुवुदिल्ल, शिस्तनु मरेये बाळल्लेन्नु।

बच्चों आराम से गाइए, दौड़ना मत। और यह है तीसरा और अंतिम चरण। इसमें पहला और तीसरा चरण एक तरह के हैं। प्रकृति

0: चलिए अब हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। वाद्यों के साथ गाने में बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: सितार बजाने के लिए यहाँ आए हैं जयंत कुमार दास, कीबोर्ड पी मोहनराज, गिटार बी ए जयसिंह, श्रुति सहकार दे रहे हैं सी वी रामकृष्णा, तबला बजाकर भाई रविंद्र यावगल आपके दोस्त बन गए हैं ना? चलो अब तबले पर संगति दे रहे हैं रविंद्र यावगल।

0: बच्चों, अब आपने एक गीत सीख लिया ना? क्या इस गीत आपको कैसे लगा?
1: हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बाकी बच्चों को भी सिखाएंगे ना?
2: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ। इसमें आज आपने सुना कन्नड़ भाषा के गीत का प्रशिक्षण पाठ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुने ये देशभक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे देश प्रेम से परिपूर्ण ये देशभक्ति रचना समूह स्वर में। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। पेश है आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को उर्मिला

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रोमांस से। आवाजें थी लता मंगेशकर और अमित कुमार की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था संगीतकार आरडी बर्मन ने। और सुनने के लिए ख्वाहिशमंद आप सभी श्रोता अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन इस गीत को सुनना चाहते थे अपने ईमेल के जरिए मालियान सरधना मेरठ से। इसी गीत की फरमाइश भेजी है एसएम जावेद शगुप्ता अंजुम ने ईमेल के माध्यम से गुमला झारखंड से। ये ईमेल मिला है मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, छोटू पवार, शंकरलाल गगराने, वनीता गगराने और मोहम्मद हसनैन पवार का, ताज मंजिल बाजार खंडवा से। ये हैं संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ और शौर्य नामदेव बघेरा दुर्ग से। ये ईमेल भेजते हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और इनके परिजन भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। खुर्जा उत्तर प्रदेश से ईमेल आया है तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन, अंकुश अरोड़ा का। ये हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर। इसी श्रृंखला में ये ईमेल आया है गुरमीत सिंह मीता और इनके परिवार वालों का, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। ये हैं मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मन मानस और कनिका पटेल। ये फरमाइश भेजी है डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रवारी ने।

लीजिए आप सुनिए, ये वादा रहा इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार आशा भोसले की, संगीत निर्देशन एक बार फिर आरडी बर्मन का, शब्द रचना गुलशन कुमार की है और फरमाइश की है आप सभी ने। हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक का ये ईमेल आया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। ये भेजते हैं अफजल ताज शाहीन।

67 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से हैं शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। ये फरमाइश मिली है मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज, बेबी चाहत की, गिरडीह झारखंड से। चारमीनार चौक गणई पड़रिया से अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिलराज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका, सुशीला और इनके परिवार वाले। दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीला, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव का ये पत्र है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। राजाराम अहिरवार, राधेलाल अहिरवार, शारदा, दीपा, सीमा, बेनीबाई, निशु और प्रवीण अहिरवार। वार्ड नंबर 15 जिला टीकमगढ़ से, ग्राम गुना। ये पत्र भेजा है बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनुमीत, अमोल, जानवी, शिवांश और अभिजीत सिंह सांगा ने, रामलीला मैदान सचेंडी से। ग्राम हरपुरा मड़िया पोस्ट खिरिया नाका जिला टीकमगढ़ से इंद्रपाल सिंह राजपूत, देवी सिंह, चंद्रपाल सिंह, उम्मेद कुंवर, उर्मिला, प्रेम कुंवर, नेहा, अंकिता देवी, अनीता, आरुषि और ऑरेंज सिंह राजपूत। आप सभी की फरमाइश इस गीत के जरिए।

श्रोता, इस गीत के लिए ये ईमेल हमें मिला है पंजाब रामटेके यशोधरा रामटेके श्राव्या रामटेके का सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से। ये हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय हैप्पी नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, दुबिहार नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय रोशनी और

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश आप सभी के लिए फिल्म फैंटम के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। संगीतकार हैं प्रीतम, गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की। सुनना चाहते हैं आप सभी अभिजीत गम्हाड़कर, राही श्रीमती सरिता गम्हाड़कर, प्रिंस और एकांश गम्हाड़कर, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गम्हाड़कर, सिद्धांत, अर्जुन गम्हाड़कर और टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली नील, शैलेश गम्हाड़कर, सुमित गम्हाड़कर और ध्वनि गम्हाड़कर परी के नाम के साथ ईमेल के माध्यम से। ये ईमेल आया है विकास वनसोड़े, रेखा वनसोड़े, अदिति और वैभव शिंदे का, बीट शहर महाराष्ट्र से, हिल स्टेशन खंडाला से हैं आकाश सरोंदे और प्रिया सरोंदे। इसी क्रम में ये ईमेल भेजा है बिट्टू भाटिया, रीता और रजत भाटिया ने मयंक भाटिया के नाम के साथ, झज्जर हरियाणा से। ये ईमेल प्राप्त हुआ है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत और लखनलाल देवांगन का, सावित्रीबाई देवांगन के नाम के साथ, पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से। ये मेल भेजते हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, अस्तुपुरा जिला मऊ से और बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अबुल्लाह आजाद। ईमेल हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू के नाम के साथ हमें मिला है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ये हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से। इसी के लिए पत्र हमें मिला है प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल, महाराष्ट्र बीट शहर से। ये हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा अपने खत के साथ चंडीगढ़ से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा अपने पत्र के साथ और फरमाइश के जरिए, प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से, हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई प्रभु, लालमाता, सुदामा नगर, रतलाई जिला झालावाड़ से। आप सभी की फरमाइश इस गीत के लिए।

इसी गीत की फरमाइश के लिए एक ईमेल भेजा है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और अंकिता सिंह ने। ये हैं सागर से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविन्द्र, संगीता, महेंद्र, रामदेवी सेन, सुरेंद्र, नंदिनी, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल और दीप्ति।

मंगलखेड़ा फंगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश और राहुल शर्मा का। ये पसंद भेजी है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने इमली रिंगनी छत्तीसगढ़ से। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौशर का ईमेल आया है शेरकोट जिला बिजनौर से।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आप सभी के लिए इस गीत के जरिए। फरमाइश भेजते हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ग्राम ममना सरीला, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। ये हैं अयूब खान, इरम गुड़िया खान, शोएब खान, करूला मुरादाबाद से, जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख का मेल मिला है सिंधौली, मीरगंज, बरेली से। इसी क्रम में ये पत्र भेजा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, जीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर, संगीता, हर्षित और वैभव मट्टू के नाम के साथ। फरमाइश भेजने वालों में ये ईमेल हमें प्रेषित किया है ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया जी ने, उदय भान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और परिवार के साथ रजौनी जिला महुआ, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से इसी गीत की फरमाइश की है। अगले क्रम में ये ईमेल प्राप्त हुआ है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। ये फरमाइश करते हैं पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। ये हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा, चंडीगढ़ सिटी से। ये फरमाइश भेजी है वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिट्टू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। तो आइए पूरी कर रहे हैं आप सभी की फरमाइश इस गीत के साथ।

पर फरमाइश मिली है। महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। ये भेजते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सादिर राही, महराजहां आजाद नगर, लक्सर से। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर टैगोर।

ये गीत आपने सुना फिल्म पद्मावत से। आवाजें थी श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की। संजय लीला भंसाली का संगीत था और गीतकार थे एएम तुरस। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आप सभी के लिए फिल्म शैफ के इस गीत के जरिए सुनना चाहा है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा आराध्या साहू ने। खेल बाजार पानीपत से ईमेल है नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष कोयल नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल डुग्गू भाविक सिक्का। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से गजानन एले नवदीप विश्वदीप गौरांग एले पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा भूपेंद्र सीमा अनमोल जुनेजा और साहिबा गुप्ता। ग्राम कबनूपुर कोल्हापुत्र महाराष्ट्र से रेवड़ भाविष्टे अनीता भाविष्टे और राहुल।

इसी क्रम में ये ईमेल मिला है गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से राहुल और इनके परिवार वालों का। ग्राम हिगड़ी आलोड जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज शिवांगी धाकड़। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार ज्योत्सना हर्ष और दीपल एमपी शाजापुर से हैं। मनमोहन राजापत राज मधु राशि चितरंजन कमल उमेश सरोज आरती रेखा रितिका रिचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ राजापत अजीत कसाना माया देवी रितिक आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से।

0: मीडियम वेब पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त श्वेता। बशीर बद्र साहब का एक मशहूर मतलब कहना चाहिए एक लाइन है जिन्हें मैं कहना चाहूंगी, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता, जहां दरिया समुद्र से मिला दरिया नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, है ना। तो आप भी इस बात के लिए हमसे सहमत होंगे कि हमारा और आपका भी रिश्ता एक प्यार भरा स्नेह भरा रिश्ता है, और आज हम इसी कार्यक्रम से भी इसी तरह जुड़े हुए हैं, है ना। तो अब हम चाहेंगे आपके पसंदीदा गीत सुनवाएं, जिसके लिए आप हमें फोन करेंगे इन नंबरों पर 2660902। बाहर के श्रोता साथी STD कोड लगाकर 0755 हमें लगाकर फोन कर सकते हैं और अपने विचार और अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके। जी
3: हेलो।
2: हाँ हेलो, हमारी आवाज आप तक आ रही है?
3: जी दीदी आ रही। नमस्कार।
2: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
3: जी दीदी, मैं अपना पहले परिचय दे दूं फिर।
2: जी जी,
3: मैं दादू वैद कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ दीदी।
2: रोशन सिंह यादव, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: रोशन सिंह।
2: हाँ जी,
3: यादव नहीं।
2: अच्छा अच्छा, सॉरी, रोशन सिंह कहाँ से?
3: जी,
2: जगह का नाम
3: दादू वैद कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश।
2: जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में फोन करें गीत सुने में। पहले बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
3: दीदी फिल्म का नाम तो मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन गाने के बोल हैं चेहरा तेरा जब जब देखूं प्यारा है तुझ पे।
2: चलिए हम सर्च तो करेंगे, लेकिन बताएं ना आप कौन से फिल्म का गीत है, ये नहीं याद है?
3: मतलब मुझे फिल्म का नाम नहीं पता।
2: चलिए एक और बता दीजिए हमें, है ना, एक और फिल्म का। हाँ, एक और गाना।
3: एक और मैं यही वाला बस सोच के आया था, मतलब
2: आपकी पसंद के तो और भी गीत हो सकते हैं, है ना।
3: जी जी, हा? वो मतलब फिल्म का गाना वो भी नहीं है, मतलब गाना है वो भी ऐसे ही।
2: जी,
3: कोई फिल्म नहीं है, भला किसी का को हम साथ साथ हैं का है।
2: जी जी जी जी, बिल्कुल,
3: मतलब ये तो सच है कि भगवान है।
2: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ना।
3: जी जी जी जी जी,
2: तो

0: दीदी मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मैं आपकी रेडियो में तो श्वेता बोल रही हूँ
0: जी। दीदी मैंने आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है और आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनीता सिंह दीदी जी से मिलती है।
1: हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, है ना
0: जी?
1: जी, जी, जी, जी। तो बताइए कैसा है वहाँ मौसम का हाल चाल?
0: दीदी मौसम का हवाएं चल रही हैं, मतलब रोज बादल हो रहे हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज्यादा तो अभी नहीं हो रही है, छिटपुट वर्षा हो रही है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना,
0: मतलब गर्मी तो है ही वाला।
1: हाँ
0: का क्या कहना है,
1: सही बात है ना। और थोड़ी क्या होता है कि हमें ठंडक तो मिलती है लेकिन उसके बाद थोड़ी उमस भी शुरू हो जाती है ना।
0: जी जी, हल्की बारिश होती है तो फिर से उमस हो जाती है, शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा ही मतलब सबकी आधारा है, अब हम ही पेड़ पौधे कटवा रहे हैं, लगवा नहीं रहे हैं कोई, मतलब
1: जी जी जी बिल्कुल
0: जी, इसीलिए हमें गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
1: तो बहुत
0: मतलब के हमारे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे दीदी लगे हुए हैं, के हैं, नींबू के हैं, आम के हैं, और भी मतलब बहुत सारे महुए के हैं, कनायर के हैं, मतलब फूल होते हैं जो।
1: बहुत बढ़िया, आपने पेड़ पौधे लगा के रखे हुए और जी, आपकी बात सुनकर हमें अच्छा भी लगा और सारे लोगों तक की संदेश भी पहुंच रहा है कि अपने आसपास पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, है ना।
0: अगर एक तो पेड़ कटाएं तो चाट दीदी लगाएं, हम यही
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हम यही चाहेंगे, क्योंकि अपने चारों तरफ अगर हरियाली होगी तो निश्चित रूप से गर्मी कम होगी, है ना। आपने फोन किया,
0: यही अपने श्रोताओं से जो भी सुनना चाहते हैं तो उनसे
1: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: जी। दीदी नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
2: हाँ बहन जी नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
2: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन
1: जी। तो चंदेल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना? तो सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप?
2: बस बहन जी, मैं आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बढ़िया हूँ
1: जी,
2: और मैं कि आप भी बढ़िया हो।
1: बिल्कुल, हम भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आपसे बात करके। अपनी जगह का नाम बताएं जरा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ
1: जी। तो बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा खानदान
1: जी,
2: और गाने के बोल रहेंगे नील गगन पे उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया।
1: बहुत ही प्यारा गाना है ये
2: जी,
1: ना?
2: जी
1: बिल्कुल। अभी मौसम भी कुछ इस कदर हो गया है ना, जहाँ आप रहते हैं वहाँ कैसा मौसम है? बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है?
2: हाँ, बारिश तो नहीं हो रही
1: हाँ,
2: लेकिन बदल है, मतलब मौसम ऐसा ही है, कुछ गर्मी भी है, बदल भी है,
1: बूंदाबांदी
2: भी हो जाती है
1: हाँ,
2: तो मिला जुला मौसम है, यानी बढ़िया मौसम है।
1: हाँ बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या खेती है आपकी, खेती किसानी
2: हाँ,
1: करते हैं?
2: जी, मैं खेती किसानी करता हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ, किसान हूँ और आकाशवाणी सुनता रहता हूँ।

0: हूँ। इससे क्या है, खेती किसान के लाने बढ़िया कार्यक्रम आते हैं
1: जी
0: तो वो हमको लाभ दे जाते हैं।
1: जी जी जी जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलिए, आप
0: आपका शुभ नाम जाना।
1: मैं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता बोल रही हूँ, है ना?
0: अच्छा।
1: तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बताएं आपके मित्रों के नाम।
0: दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट धाम से
1: जी,
0: और फूलचंद पाल जी हैं मनकारी से, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने इतने अपने सारे मित्रों का नाम लिया, हमें भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो जी नमस्कार।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: आपके निमित्त श्रोता भागचंद।

0: साहू जी, राजेंद्र नगर, गंज बासोदा, जिला विदिशा।
1: जी, तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपने फोन किया है कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने में।
0: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही जगह लगा।
1: हाँ, तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: आज हमें सुनना है बॉर्डर फिल्म का।
1: बॉर्डर फिल्म का गीत,
0: संदेश आते हैं, चिट्ठी आती फौजी भाइयों के लिए।
1: बिल्कुल, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल दीदी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है दीदी, पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाता हूँ मैं, उसी की तैयारी चल रही है।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप रेडियो भी सुनते हैं?
0: अरे दीदी, कम से कम 18 साल हो गई हमारे लिए रेडियो बिल्कुल सुनते सुनते।
1: हाँ, आज में हमें बहुत अच्छा लगा, है ना, कि आप हमारे यहाँ।
0: आपके तो हम नीमे सोता है और पत्र भी डालते हैं, ग्राम सभा है।
1: अच्छा,
0: सभी कार्यक्रम है, लोक रंग है।
1: हुँ।
0: पूरे सारे कार्यक्रम सुनते हैं और सुझाव भी आपके लिए हम भेजते रहते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलिए, आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: दीदी, नमस्ते नमस्ते।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार मैम। नमस्कार
0: जी, आपका नाम बताएं।
1: मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूर मनमोजी बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना? तो पहले बताएं कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे
1: जी?
0: पहले बताएं आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे जीने नहीं दूंगा गाना सुनना मैम।
0: जीने नहीं दूंगा, कौन सा गाना है इसका?
1: बादल रेशमा तुम याद ना आया करो।
0: अच्छा, एक और कोई मतलब बता दीजिए।
1: आपके हिसाब से सुना दो मैडम, आज तो आज आपकी आपकी
0: नहीं ऐसा नहीं, हर इंसान की बहुत सारी पसंद तो बहुत सारी होती है ना फिल्मी गानों की। एक और हमें चॉइस बता दीजिए, है ना?
1: अच्छा, ये है ना, ये मुद्दत का मिल जाएगा मैडम?
0: हाँ जी बिल्कुल, है ना, सुनाएंगे।
1: यार हमारा,
0: हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, आपने देखिए गा के भी हमें सुना दिया है ना। चलिए, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी,
0: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम बाबू यादव है दीदी
0: जी,
1: और मैं सारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ
0: जी।
1: दीदी आपका नाम भूल रहा हूँ, जरा बता दीजिए।
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना?
1: जी जी जी।
0: तो सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ दीदी, हमको सुना दीजिए फिल्म मेरा साया का है कि तू जहाँ जहाँ चले जा मेरा साया साथ होगा, लता जी ने गाया हुआ है।
0: बहुत ही खूबसूरत गीत है, है ना?
1: जी, जी।
0: आपकी पसंद भी बड़ी प्यारी है, है ना? क्या करते हैं?
1: और ये दीदी मेरे श्रीमती जी के लिए डेडिकेट रहेगा विशेष तौर से।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।

0: उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा हूँ बहन।
1: जयपाल यादव
0: जी,
1: अच्छा बताएं आप कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी आज मुझे एक फिल्म का नाम है जुनून, इसमें गीत है जो प्यार कर गए वो कुछ ऐसा गीत है वो।
1: बिल्कुल
0: जुनून फिल्म का है।
1: अच्छा एक और पसंद का भी गीत बता दीजिए आप, एक और पसंद अच्छा, बता दीजिए अपनी।
0: अच्छा एक और पसंद में हाँ? तो एक फिल्म का नाम है जानवर, इसमें गीत है अलका याग्निक जी का गाया हुआ गीत है मौसम की तरह।
1: बिल्कुल है ना, बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपको आपकी पसंद के ये सारे मतलब ये गीत। क्या करते हैं आप?
0: जी बहन जी वैसे तो मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, मतलब जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जन योजनाएं हैं उन तक गरीब असहाय तबके बच्चों को या परिवारों को लाभ दिलाने का काम करता हूँ, खाद्यान्न विभाग से जुड़ा हूँ।
1: जी और साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं?
0: बिल्कुल आपके मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सभी सुनते रहते हैं और जो भी आपके यहाँ से ज्ञान से भरी या मनोरंजन से या जानकारी मिलती है तो वो अपने जीवन में और जो खेती से संबंधित उन किसान भाइयों तक पहुंचाना हमारा प्रयास रहता है कि हम उन तक आपके केंद्र से सुनकर उनको लाभ दिलाएं।
1: हमें जानकर बड़ा अच्छा लगा और इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्ते मैम,
0: फोन करें गीत सुनने में स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं।
1: मैं शिवानी मेहरा बात कर रही हूँ, नीमच से।
0: नीमच से बात कर रही हैं जी। तो कैसी हैं आप?
1: अच्छी मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। बताएं कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम मूवी का नाम है गुमनाम और गाने बोले मोहब्बत से ज्यादा।
0: गुमनाम। अच्छा अच्छा, ये पुरानी वाली मूवी ना?
1: हाँ मैम, ज्यादा पुरानी भी नहीं है।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, 90 के मतलब 90 या 2000 समथिंग की है।
0: अच्छा, एक और अपनी पसंद का गीत बता दीजिए, है ना?
1: सलामी मूवी का जब हाले दिल।
0: हाँ जी। तो क्या करती हैं आप?
1: मैं तो कुछ नहीं करती, मैं घर पर ही रहती हूँ।
0: और रेडियो सुनती हैं? मेरे ख्याल से मेरी आपसे और भी बात हो चुकी है ना, इससे पहले भी बात हो चुकी। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने कामकाज के साथ साथ रेडियो भी सुनती हैं, है ना?
1: मैम आप कौन सी मैम बात कर रहे हो?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना?
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते। तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हमें आपके विचार जानकर और आपके पसंदीदा गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा। आशा है आप इसी तरह हमें फोन करते रहेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल आज 4,399 दिनों का हो गया है। श्री अमित शाह, डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन और शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। नई दिल्ली में आज एनडीए की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर कार्यकाल पर राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई देते हुए कहा है कि इस उपलब्धि के लिए आगामी 21 जून तक प्रदेश में कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रत्येक विकासखंड

नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 12 से 18 जून की अवधि में जन कल्याण शिविर आयोजित होंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाएंगे और राज्य सरकार ने शासकीय सेवा के लिए 2 बच्चों की अधिकतम सीमा निरस्त संबंधी नियम को निरस्त कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। श्रोता है हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। अगले श्रोता मालवा से हैं रतलाम, बलवंत कुमार, राजू वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म आजाद से। गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता है श्रद्धानंद, अभयनंद, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से, स्वर प्रीति सागर के हैं। गीत लिखा हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और अमित खन्ना ने, गीत को संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अजमा, सालिया शोएब खान, मुश्तबा खान, राउफ और शाहिद। अगले श्रोता गांधीबाग अकोला से हैं, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत सुनेंगे आप फिल्म सत्ते पे सत्ता से। इस गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले, किशोर कुमार, आरडी बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती, बासु और साथियों ने। गीत लिखा गुलशन बावरा ने, संगीतकार हैं आरडी बर्मन और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, ननन और तानी।

मोहम्मद रफी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है अंबेडकर चौक खुरई से। श्रोता है रामसखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, रोहित, पूरन, छोटू डुंडुन, इन्हीं के साथ अगले श्रोता किशोरी बोस हैं, प्रियंका बाथरे, बसंत बाथरे, सरोज तिवारी, अजीत, हिमांशी, नितिन, आशीष और ममता। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

प्रदूषण पर भी नियंत्रण हो रहा है और वातावरण भी स्वच्छ होता जा रहा है। हमारी बहनें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होती हैं। वे परिवार के सदस्यों को जल बचाने, बिजली की बचत करने, वृक्षों को बचाने और प्रदूषण को कम करने के बारे में बताती हैं। बहनों, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का विशेष योगदान है और ये प्रेरणादायक भी है, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण करें। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, पर्यावरण का संरक्षण करना है। हाथ में पौधे लेकर मन में संकल्प करें कि पेड़ पौधे लगाकर हम धरती का श्रृंगार करेंगे और वसुंधर वसुंधरा का निर्माण करेंगे। मखमली चादर ओढ़े मुस्कुराती है वसुंधरा प्यारी, पेड़ पौधों के गहने पहने लगती सबसे प्यारी, पर्वत इसके ऊंचे मस्तक, नदियां इसकी बहती धारा, कण कण में है जीवन इसके, ये सुंदर संसार हमारा।

0: बहनों, अभी आपने बूंद जो बन गई मौती फिल्म का गीत सुना। आवाज थी मुकेश की, गीतकार थे भरत ब्यास, संगीतकार थे सतीश भाटिया। बहनों, अब मिलते हैं अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बीआर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: बहनों, कविताएं मन की भावनाओं की लड़ी होती हैं, जिसमें मोती की माला के समान अपने अनुभवों को पिरोया जाता है। तो बहनों, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ऐसा ही काव्य पाठ। कवियत्री हैं सावरा सिद्दीकी।
3: ये मेरी पहली गजल है। हरेक सिमत गम ही गम दिखाई देता है, हरेक सिमत गम ही गम दिखाई देता है, ईद का दिन भी मुहर्रम दिखाई देता है, ईद का दिन भी मुहर्रम दिखाई देता है। करेगा कौन यहाँ जज्ब आँख के आंसू, करेगा कौन यहाँ जज्ब आँख के आंसू, सभी का दामन पुरनम दिखाई देता है। फिजा को देख के लगता है हो दुल्हन कोई, फिजा को देख के लगता है हो दुल्हन कोई, लहू से सुर्ख ये मौसम दिखाई देता है, लहू से सुर्ख ये मौसम दिखाई देता है। अजीब ढंग से आया बहार का मौसम, अजीब ढंग से आया बहार का मौसम, गुलों की बज्म में मातम दिखाई देता है। चढ़ा हो जिसकी नजर पर फरेब का चश्मा, चढ़ा हो जिसकी नजर पर फरेब का चश्मा, फरेबी उसको ये आलम दिखाई देता है। हसी गुलाब से चेहरे पे अश्क के मोती, हसी गुलाब से चेहरे पे अश्क के मोती, हरेक कतरा भी शबनम दिखाई देता है, शबनम दिखाई देता है। उम्र भर चुनता रहा मुझको जो दीमक बनकर, उम्र भर चुनता रहा मुझको जो दीमक बनकर, सभी को वो मेरा हमदम दिखाई देता है। यारब में तेरे दर के सिवा जाऊं कहां और, यारब में तेरे दर के सिवा जाऊं कहां और, है तेरे सिवा कौन बता मेरा यहां और। हर बार संभाला किया तू रोजे हश्र भी, हर बार संभाला किया तू रोजे हश्र भी, रख लेना लाज मेरी एक बार वहां और, रख लेना लाज मेरी एक बार वहां और। और दुश्मन ने मिलके इस कदर धोखे दिए के अब गले दोस्त भी मिले तो होता है गुमा और। जितना इसे काटा गया उतनी ही चली है, है उर्दू के मुकाबिल भी बता कोई जुमा और। ये मगरबी तहजीब रिदा छीन रही है, फिर चाहिए गांधी सा कोई राहनुमा और। रिश्तों की कैद तोड़ के चल सावरा वहां, रिश्तों की कैद तोड़ के चल सावरा वहां, मतलब अलग हो जीने का मकसद हो जहां और। यारब में तेरे दर के सिवा जाऊं कहां और। नहीं

सावन के झूले, वो सखियों का झुरमुट, वो सावन के झूले।

ख्वाब देखा था हमने कभी एक हसीं, ख्वाब देखा था हमने तसव्वुर में वो दिलकशी ढूंढते हैं तसव्वुर में वो।

0: ये मेरी आखिरी गजल है। मुल्के अजीम का जो सिकंदर बदल गया, मुल्के अजीम का जो सिकंदर बदल गया, कानून क्या हवा का भी तेवर बदल गया। जाने कहां से मछली, जाने कहां से मछली महज एक आ गई, जाने कहां से मछली महज एक आ गई, सारे का सारा आवे समुन्द्र बदल गया, समुन्द्र बदल गया। आया जो उनका चेहरा, आया आया जो उनका चेहरा बदलता हुआ नजर, आया जो उनका चेहरा बदलता हुआ नजर, मेरे नियम का खुद ही रजिस्टर बदल गया। महफिल में तेरी आके मुकद्दर बदल गया, महफिल में तेरी आके मुकद्दर बदल गया, सारा निजाम जिंदगी मिलकर बदल गया। चेहरा पढ़ा जो गौर से, चेहरा पढ़ा जो गौर से तो महसूस तब हुआ, चेहरा पढ़ा जो गौर से महसूस तब हुआ, ऊपर तो ज्यों का त्यों देखे, ऊपर तो ज्यों का त्यों देखे अंदर बदल गया। महफिल में तेरी आके मुकद्दर बदल गया, वो चाहता था, वो चाहता था सिर्फ मुझे ही मिले उरूज, वो चाहता था सिर्फ मुझे ही मिले उरूज, भागा जो आगे आगे तो दफ्तर बदल गया, भागा जो आगे आगे तो दफ्तर बदल गया। और शिकवा किसी से क्या, शिकवा किसी से क्या के खुद अपने ही साबरा, शिकवा किसी से क्या कि खुद अपने ही साबरा, ऐसा बदल गए दिले मुस्तर बदल गया, ऐसा बदल गए दिले मुस्तर बदल गया।
1: बहनों अभी आपने काप पाठ सुना, कवियत्री थी सावरा सिद्दीकी। बहनों कहावत है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर ही व्यक्ति की शारीरिक शक्ति प्रदान करता है, जबकि स्वस्थ मस्तिष्क उसे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है संतुलित आहार और पोषण। बहनों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, बदलती जीवन शैली में फास्ट फूड की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अनियमित खानपान के कारण पोषण संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। दिनचर्या में अपने लिए समय निकालें और संतुलित आहार लें। संतुलित आहार हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को निरोगी बनाए रखता है। संतुलित आहार में कुछ मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं, मक्का, आलू, गुड़ और

फलों के रस में पाया जाता है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को सक्रिय बनाए रखता है। बहनों, प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, जो शरीर के निर्माण और मरम्मत का कार्य करता है। ये दालों में, दूध, पनीर, सोयाबीन, चना में पाया जाता है। ये शरीर को सक्रिय बनाए रखता है। वसा भी शरीर को ऊर्जा देता है, जो घी, मक्खन, तेल, मूंगफली और तिल में पाया जाता है। ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में और रोगों से बचाने में मदद करता है। ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। बहनों, इनके अलावा खनिज लवण भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन। ये दूध, हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पिए। बहनों, संतुलित आहार लेने से शरीर का विकास होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति ऊर्जावान बना रहता है। गंभीर बीमारियों से बचाव होता है, जीवन में दीर्घायु पाता है। अगर हम शरीर की आवश्यकता अनुसार सही पोषक तत्व नहीं लेते हैं तो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे शरीर में कमजोरी लगती है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है और शरीर का विकास रुक जाता है और शरीर में कई बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए हमें अपनी नियमित दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज, पोहा, उपमा, दलिया, दूध ले सकते हैं। दोपहर खाने में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, दही लें और शाम के समय हल्का भोजन करें। बहनों, संतुलित आहार, उचित पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा ही नहीं देते बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास भी करते हैं। वर्तमान समय में स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन तत्व, नियमित व्यायाम और संतुलित जीवन शैली होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं, क्योंकि सच ही कहा है, पहला सुख निरोगी काया। बहनों, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रोमांस फिल्म का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, अमित कुमार की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

बहनों, गर्मी का मौसम आते ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तेज धूप और अधिक तापमान के कारण पसीना आता है, लू लग जाती है, जिससे शरीर में पानी और आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में शीतल पेय पदार्थ को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जल की कमी को पूरा करते हैं और शरीर में ताजगी बनाए रखते हैं। बहनों, आज हम शीतल पेय पदार्थ के बारे में बताएंगे। बहनों, नींबू पानी पिए, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इस शरीर को ठंडक देता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। शिकंजी बनाकर भी पी सकते हैं, इस शरीर को ऊर्जा देता है। बहनों, लस्सी भी पौष्टिक पेय है, ये मीठी और नमकीन दोनों होती है। इसको पीने से गर्मी में राहत मिलती है, शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। छाछ भी पी सकते हैं, खाने के बाद छाछ पीना अति लाभदायक होता है। बहनों, नारियल पानी प्राकृतिक शीतल पेय है, इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और शरीर को तरोताजा बनाए रखता है। उबले आम से पन्ना बनता है, इसको पीने से लू का बचाव होता है। ये शरीर को ऊर्जा देता है और गर्मी के प्रभाव से बचाता है। बेल का शरबत भी बनाकर पी सकते हैं, ये शरीर को ठंडक देता है, पाचन संबंधी क्रिया को दूर करता है और गर्मी के मौसम के लिए लाभप्रद होता है। तरबूजा और खरबूजा का सेवन करते हैं तो शरीर हाइड्रेट रहता है, ताजगी मिलती है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। गन्ने का रस भी प्राकृतिक ऊर्जा देता है, गर्मी से राहत मिलती है, शरीर से ऊर्जा मिलती है। कैल्शियम और अन्य तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। भुने हुए चने से सत्तू बनाया जाता है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ साथ लंबे समय तक ऊर्जा देता है, थकान और कमजोरी दूर करता है। इन पेय पदार्थों के सेवन से पानी की कमी पूरी होती है और शीतल पेय पदार्थों का उपयोग करने से पहले देख लेना चाहिए। स्वच्छ और ताजे फलों का ही सेवन करें, ज्यादा ठंडे पेय पदार्थ का सेवन ना करें और

अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अर्चना जाटव के गाए लोक गीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे स्मिता घांगरेकर के गाए भजन।

0: स्मिता गांगरेकर के गाए भजन अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: सदी हो तुम या यूं कहें वक्त की रफ्तार, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अंतराल का समय पूरा हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सुन पाते हैं हार्टलेस फिल्म का गीत केके की आवाज में। गीत लिखा है सीमा सैनी ने और संगीत गौरव डागोनकर का है।

केके की आवाज में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रईस फिल्म से, जिसके बोल लिखे हैं मनोज यादव ने और धुन बनाई है जेम 8 ने।

0: केके की आवाज में अभी आपने रईस फिल्म का ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उन्होंने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ये योजनाएं उनके दिल में खास जगह रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार कार्यकाल की सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकलकर सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं।
1: हम सबका सौभाग्य है आज भारत की आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सर्वाधिक अधिक अवधि तक काम करने का नया रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बन रहा है। सर्वाधिक रूप से सक्षमता के साथ काम करने वाले पूरे देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक 80 करोड़ लोगों का तो पेट भरकर 25 करोड़ लोगों को मकान दे 25 करोड़ लोगों को।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर काम करता है वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। विदेशी मेहमानों ने इंदौर का मशहूर पोहा जलेबी का नाश्ता भी चखा। सम्मेलन में आज साझा घोषणा पत्र के मसौदे पर विचार विमर्श होगा और शाम को द्विपक्षीय बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यह नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान को तत्काल पोर्टल से हटाने और नया प्रारूप प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि नटराजन ने शपथ पत्र में हैदराबाद कोर्ट के एक लंबित मामले की जानकारी छिपाई जिसके आधार पर कल उनका नामांकन रद्द किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर व दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति भवन से इसकी औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। छिंदवाड़ा कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों की जिला स्तरीय समन्वय समिति DLC की बैठक आज आयोजित की गई। शिवपुरी जिले में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं और ITI मंडला द्वारा कल सुरक्षा जवान, ड्रोन पायलट, सुरक्षा सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर

0: ने किए अमेरिका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए वो सबसे बड़ा विषय। आज हमारा गरीब हमारा परिवार की मुख्य धारा के साथ जोड़ के काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई विजेताओं

0: भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश

0: कोशिश की है तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जरडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों से 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सबसे पहले सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहा है दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। साथ ही साथ ये फरमाइश हमें मिली है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदड़े, आरती जोंदड़े की

और सपना संगीता रोड इंदौर से ये गीत पसंद करने वाले हमारे श्रोता है लाल फतेह चंदानी, लीला, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें पत्र मिला है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से ये हमारे श्रोता है, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और गोला बाजार बक्सर से इस गीत को पसंद किया है। बीना देवी आर्य, सबिता देवी आर्य, पूनम, पूजा, एस एन आर्य, रोशनी, अमृता, सुरभि और खुशबू, राजा बाजार चौक बिहिया खारा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी, बीना और प्रतिज्ञा केशरी, आप सभी सुनना चाहते हैं। पारस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और कार्यक्रम में आगे सुनवा रहे हैं ससुराल फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन इस गीत को पसंद किया है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। साथ ही साथ इस गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दंतरिंगी से भागवत वर्मा ने। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं ससुराल फिल्म का ये गीत।

डोंगरगांव से, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, ये है राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजिये गजबिये। इसी के साथ इन्हीं के पत्र में हमारे जो अन्य नाम शामिल हैं वे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।

हंसते जख्म इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत मदन मोहन का है और गीत लिखा है कैफी आजमी ने। इस गीत को पसंद किया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ये हैं। और बत्ता परिवार के सदस्यों के नाम हैं मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम मोहम्मद, राही, महराज जहां, ये हमारे श्रोता है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। रूपाली मालवीय, अर्चित मालवीय और सुमन मालवीय, ये है होशंगाबाद रोड भोपाल के हमारे श्रोता। और इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मोश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं प्रेम पर्वत फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज ने, जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा है और संगीत जयदेव का है।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनसेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति विनम्रता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निरंतर काम करता है, वही जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आजादी के बाद निर्वाचित रूप से सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाया है। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन विदेशी मेहमानों को शहर की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया गया। 20 से ज्यादा देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक राजवाड़ा में हेरिटेज वॉक की और होलकर काल के इतिहास को करीब से जाना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5 बजे से। 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की योगदान से है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:15 पर। क्षमा कीजिए, सांध्यकालीन सभा में रात 8:35 पर फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। सात बजकर 21 मिनट पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनवाया जाएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है तुम सही हो मार्गी। ये नाटक आप सुनेंगे

रात 10 बजे जिसके लेखक हैं विमल कांत येंडे और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिए सरवर हुसैन का सारंगी पर बजाया राग पूर्या कल्याण। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़

नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम युववाणी।

0: वक्त और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती हैं।
1: क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वक्त निकल जाता है। साथियों, स्वागत है इसी सुविचार के साथ आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल और मेरे साथ हैं
0: मोहित सिंह सेंगर।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार। तो दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। इसमें आज की पहली चर्चा होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड का महत्व। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजना है, जिसे किसी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए शुरू किया गया था।
1: इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी जमीन की मिट्टी की सेहत के बारे में सटीक जानकारी देना और उनके अनुसार सही खादों के इस्तेमाल की सलाह देना है।
0: आइए हम बताते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड है क्या। जिस तरह बीमारी के समय डॉक्टर इंसानों का ब्लड टेस्ट करके हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, ठीक उसी तरह यह कार्ड खेतों की मिट्टी का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है।
1: यह प्रत्येक किसान को उसकी जमीन के अनुसार दिया जाता है। इस कार्ड में मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति का पूरा ब्यौरा होता है।
0: यह कार्ड हर 3 साल में एक बार किसानों को उनकी मिट्टी की जांच के बाद किया जाता है।
1: साथियों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मुख्य रूप से मिट्टी के 12 महत्वपूर्ण घटकों की जांच की रिपोर्ट होती है।
0: इसमें मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और गुण पोषक तत्व सल्फर, सूक्ष्म पोषक तत्व जस्ता, लोहा

0: तांबा, मैंगनीज और बोरोन है।
1: यह योजना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करती है, जैसे नमूना इकट्ठा करना, प्रयोगशाला में जांच, कार्ड वितरण करना।
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारतीय कृषि के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह पारंपरिक खेती को वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ ले जाने का एक बेहतरीन प्रयास है।
1: हालांकि देश के दूर दराज के इलाकों में अभी भी कई किसान इस योजना के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हैं। यदि ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविर लगाए जाएं और किसानों को कार्ड पर लिखी सिफारिशों की समझने में मदद की जाए।
0: तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली चर्चा मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर। अब हम मिलते हैं आपको एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों, अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में, और अब आपके मनोरंजन के लिए सुनवाते हैं राब्ता मूवी से ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों भी आपने सुना हमसिका अरिजीत सिंह की आवाज में राब्ता फिल्म से ये मधुर गीत।
1: इसमें गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम।
0: साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है महीने का दूसरा बुधवार और आज के दिन हम लेकर आते हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम युवा चौपाल। तो साथियों बिना देरी किए शुरू करते हैं कार्यक्रम जिसमें आलेख होगा फरीद अहमद खान का और प्रतिभागी में कक्का की भूमिका में रहेंगे शिवांशु प्रजापति, कक्की की भूमिका में रहेंगी शिवांगी तिवारी, घंसू की भूमिका में रहेंगे अनुपम खरे
1: और समीर की भूमिका में रहेंगे विश्वास तिवारी, रीना की भूमिका में रहेंगे सौम्या शर्मा और भरोसे की भूमिका में रहेंगे अभिषेक मिश्रा।

0: कक्का, ओ कक्का कहाँ हो? अरे सुनते ही नहीं है कक्का।
1: अरे घनसू, ऐसी भरी दुपहरिया में कहाँ फिर रहो?
0: अरे पाय लागे काकी।
1: खुश रहो खुश रहो, आजा भीतरे आजा।
0: राम धई काकी, बहुत ही गर्मी है, हमारे कक्का कहाँ है?
1: तुम्हारे कक्का होते भीतरे बैठ का पे आराम करते हैं। सुन घनसू, मैं इतना पास में बैठवे जा रही, ना धूप में फिरियो ना कक्का का निकरन दियो, समझे?
0: अरे काकी चिंता ना करो, हमारे रहत कक्का इतने होते कहूँ न डोल सकत, अपन आराम से जाओ। अरे कक्का इतने पंखा की हवा में आराम फरमा रहे, और उते टेरत टेरत घाम में मुरी पीठ झुलस गई।
2: अरे तो भाई दोपहरिया में निकरन की क्या जरूरत रही, सांझे ठंडक में आ जाती।
0: अरे तैसे निकल रहे थे सो सोची चलो कक्का से मिल लिये।
2: बहुत अच्छा करो, आ बैठो। अरे राम रे, जा लाइट फिर चली गई।
0: लाइट की कछु न पूछो कक्का, दिन भर आंख में चूली खेलत रहे, रात में जैसे ही आंख लगे फट से गुल, न चैन से नींद न पानी भर पा रहे। गर्मी ने तो जान निकाल दी, अंदर कहाँ बैठे, बाहर नींद तरह आ जाओ, हवा चल रही बढ़िया।
2: हाँ तो लू जदरी बिछा लू, बैठो आराम से।
0: काहे कक्का, काकी है नहीं है, चलो टाइम पास के लाने ताश खेल लें, बहुत दिन हो गए, उठाओ ताश की गड्डी।
2: अरे यहाँ भज्जा, काकी ने देख लो तो मूरी खेल नहीं है।
0: अरे कक्का अपन तो काकी से ऐसे डरत जैसे बिल्ली से चूहा, बस काकी तना आंख दिखा दे सो अपन की हवा टाइट हो जात।
2: अरे काकी लगत कहाँ है, मैं कोनों से नहीं डरत।
0: तो फिर सोचत कहो, निकालो तांस के पत्ता।
2: लेकिन दो जनन में मजा ना है।
0: बात तो सही कह रहे, रुको भरोसे का फोन लगा रहे। अरे भरोसे कहाँ हो, सरपट कक्का के घरे आ जाओ, अच्छी दावत है जल्दी आओ।
2: राम देख हंसू तुम बहुत ही है भैया।
0: अरे कक्का दावत की ना कहते तो भरोसे कभू ना हो, तो बड़ो होशियार आदमी है।
3: अरे प्रणाम कक्का। राम राम घनसू भैया।
2: खुसराओ खुसराओ।
0: राम राम।
3: अरे जो है सो जा, अचानक दावत की खुशी में, मैं तो भागा तचल हुआ उसी दो।
0: देख ली कक्का, मैंने कही थी ना दावत को नाम सुनते ही भरोसे दौड़ पड़े।
3: का कही घनसू?
2: अरे दावत बावत नहीं, बस ताश खेल देखो, एक आदमी कम पड़ रहा तू तो ये बुला लो।
3: जो है सो दद्दा, ऐसी धूप में मोए खेल भी या बुला लो तुमने, गलत बात है तुम्हारी।
2: अरे बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिलू, बैठ जाओ।
3: अच्छा जो है सो ई को मतलब काकी नोइया है घरे?
0: काकी होती तो कक्का तांस की गड्डी छुपाते का, काकी दिन में चांद तारे दिखा देती।
3: हाँ जा बात तो तुमने सही कही।
2: ज्यादा हंसी ना उड़ा, काकी के सामने भी ताश खेल सकत, मैं कौन से नहीं डरत।
0: वाह कक्का वाह, अब आई असली बहादुरी, चलो भरोसे पत्ता तो बांटो।
2: हाँ ले जा रही मोरी चल।
3: अरे जो है सो तना, मोरे भी तो पत्ता देख लो।
0: अरे बा भरोसे तह तो जीत गओ।
3: जो है सो अब देखो मोरी अगली चाल।
0: अरे मोरे पत्ता भी कमजोर नहीं है।

0: मोए पास भी एक का है।
1: अरे जो है सो जाबाजी, तो कक्का ही जीत गए हमें लग रहा हो।
2: काय कक्का, कछु मजा नहीं आ रही।
0: तो अब का करें?
2: ऐसो करत के कछु पैसा दाव पे लगात। बोलो का कह रहे?
0: अरे यहाँ आहा जुगा अच्छो नहीं हो तो।
1: अरे कक्का, जो है सो कौन बड़ो दावा लगा रहे, बस तो ना ऐसे ही मनोरंजन के लाने छोटा मोटो कर रहे।
0: चलो जैसी सबकी मैजी।
1: चलो तो पहले 100-100 रुपया लगन दो।
2: अरे भरोसे, आज तो बड़ो धन बरस रहो रे।
1: अरे वो कल दिहाड़ी में 500 रुपया कमाए थे ना।
0: अच्छा तो ले जी रहे मुझे 100 रुपया
2: और जी रहे मोरे भी 100 रुपया।
1: अब देखो जे है मोरे पत्ता।
0: अरे ठहर जा, ज्यादा ना उकता, पहले कक्का की पत्ता भी देख ले।
2: ए भगवान, फिर कक्का जीत गए।
1: अब देखियो अगलो दाव तो हम ही जीते, ये रहे फिर से हमारे 100 रुपया।
2: अरे कक्का मोरे पास तो 50 रुपये ही बचे, चलो 50-50 लगत है।
0: हाँ जी रहे मोरे भी 50 रुपया।
1: चलो घंसू अब तुम अपने पत्ता खोलो,
0: पहले मोरे भी देख लो।
1: अरे ये बाजी, यहाँ तो फिर से कक्का ले गए।
2: अरे मोरे तो सब पैसा डूब गए, कक्का कछु उधार दे दो।
3: ओ मोरे भगवान, जो का हो रहो। अच्छा तो जुआ खेल रहो, कछु लाज शरम है के नैया।
1: अरे यहाँ काकी, जो तो अपन गलत सोच रहे, बस ऐसे ही मनोरंजन के लाने यहाँ तो ना कर रहे थे।
0: अरे भगवान, जब पतो है कि जुआ घर गृहस्थी सब चौपट कह दी, फिर ऐसी गलती कैसे कर सकत।
2: हाओ जुआ खेल भी के तो सोच भी नहीं सकत काकी।
3: हाओ मैं अंधियो पगल गया तो आऊ, मोए कौन कछु दिखा सुनाता है। कछु तो शर्म करो, ओ अपन बूढ़े होके बच्चन जैसी हरकतें करत हो।
4: प्रणाम कक्का, प्रणाम काकी, नमस्ते घनसू भैया, नमस्ते भरोसे भैया।
5: जय राम जी की, जय राम जी की।
3: खुश रहो, सुखी रहो।
6: क्या बात है, आज आप सभी लोग यहाँ एक साथ।
1: अच्छा तो चलो जो है सो अब हम निकल रहे।
2: हाओ हाओ मैं भी चलत हूँ।
7: क्या बात है, हम लोग के आते ही आप लोग चल दिए।
6: हाँ कुछ देर हमारे साथ भी बैठिए।
3: अरे निकरत कहाँ हो, पहले अपने कारनामे बता जाओ।
6: क्या हुआ काकी, कुछ गड़बड़ है क्या?
0: अरे कछु नहीं बिन्नू, तुम्हारी काकी खा तो बात को तंगड़ा बनावे की आदत या है।
3: हाओ काकी जुआ खेल भी दे सुसाजी है।
7: जुआ कौन खेल रहा था, क्या हुआ, कुछ तो बताइए।
3: अब अपने कक्का से पूछो, मैं कछु काम से का गई, ये तो पैसन कोई दाव लगन लगे, हार जीत होन लगी।
6: ये तो बहुत गलत बात है, मुझे आप लोगों से तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी।
2: अरे ऐसो कछु नहीं है रीना बिन्नू, वो तो तना टाइम पास कर रहे थे।
3: ये टाइम पास में जिंदगी बर्बाद हो जात।
7: और घनसू भैया, ये शौक शौक में शुरू हुआ खेल बाद में कबलत बन जाता है, पता भी नहीं चलता।
6: हाँ और घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है।
3: सुनो एक दूसरे के पैसा फौरन लौटा दो, समझे?
0: अरे अब जो होगा सो रान दो, पैसा लौटावे की क्या जरूरत है।
3: जरूरत है, सुन भरोसे फटाफट लौटा पैसा।
1: अब जो है सो हम कहाँ से लौटाइए, हम तो पैसा हार ही गए।
2: देखो मोरी तो जेब खाली हो गई, सबरे पैसा तो कक्का ने जीत ले।
7: कक्का आप तो बड़े खिलाड़ी निकले, सारे पैसे जीत गए।
0: अरे अब अपनी आगे को ठहर सकत।
3: आहा, कैसे खुश हो रहे, जैसे बहुत बड़ी बहादुरी को काम करो। बुढ़ा गए लेकिन हरकतें ना सुधरी।
2: काकी बंदर कितो बुढ़ा जाए, गुलाटी मार वो नहीं भूलत। बोलो सही कही ना मैंने।
3: ले भरोसे जे अपने पैसा धरो और जे घनसू तुम्हारे हैं।
0: अरे भगवान, ई में मोरे अपने पैसा भी है।
3: रान दो, अब इतो दंड तो जरूरी है।
6: हाँ कक्का, ये जुर्माना तो बनता है, इतनी सजा तो आपको मिलना ही चाहिए।
0: अरे राम, आई लक्ष्मी हाथ से निकल गई और गांठ के पैसा अलग से चबक गया, सुबह अलग।
1: और जो है सो इमे तो हमारा फायदा होगा। जय हो काकी अपन की जय हो।
0: देखो देखो कैसो ऐतरा रहा।
2: कक्का टेंशन न लो, कहो तो पैसा उधार दे दे, पूरे 3 रुपया सैकड़ा पे। बोलो का कह रहे?
0: अच्छा हमारी बिल्ली हमारी से मियाऊ। ठहर जा अभी बताता हूँ।
1: जो है सो सोचो हतुतु के दाव लगा के पैसा बढ़ जाए हैं, पर दाव तो है उल्टो पड़ गयो।
2: हाओ और जेब खाली हो गई, भलो हो काकी को पैसा वापस मिल गए, अब सब्जी भाजी लेके घर जा सकत।
6: अपनी मेहनत की कमाई जुए में बर्बाद मत कीजिए, इसे अपने परिवार पर खर्च कीजिए।
7: हाँ एक बात और ध्यान रखिए, आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है।
3: हाओ सही बात है, पढ़ाई की लाने जरूरत पड़त, सो हर माँ बाप बच्चन का मोबाइल दबा रहे।
6: हाँ लेकिन कुछ बच्चे गलत संगत के कारण ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाते हैं, तो कुछ ऑनलाइन सट्टे में भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
7: हाँ यह बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है।
0: तो हमें कैसे पता चले कि पीठ पीछे बच्चा का कर रहा हूँ।
3: हाँ और बच्चा का गोल खिला रहा हूँ, हम का जाने।
6: इस उम्र में बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। समय समय पर स्कूल

0: जाकर उनके शिक्षकों से मिलते रहिए। कभी कभी मोबाइल चेक करना भी बहुत जरूरी है।
1: हाँ, अपने बच्चों और उनकी दोस्तों की संगत पर भी नजर रखिए और कुछ गलत लगे तो उन्हें प्यार से समझाइए।
0: हाँ, ये उम्र बहुत नाजुक होती है, बच्चे बहुत भावुक होते हैं, उन्हें आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, इसलिए अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखिए।
2: अरे अब जब घर के बड़े बूढ़े बिगड़ रहे तो फिर बच्चन का को रोक रहा, गुस्सा तो ऐसी आ रही कि अक्का का डर है।
3: अरे काकी कक्का, अरे काकी कक्का का कूट दो, सबरो गुस्सा उतर जाए, एन कूटियो, अच्छी से कूटियो।
2: अरे हाओ इन्हें हाथ छुपा के मुझे नरक में नहीं जाने, ये तो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, प्यार में तरक नोक झोंक तो चलत रात।
4: अरे भगवान अपन की जे मीठी मीठी बात है दिल में गुदगुदी कर दे।
2: अरे तुम सोई कछु भी बोला, सटिया गए का, मुझे नहीं बैठने में तो जा रही।
0: अरे काकी सुनिए तो।
2: अच्छा बिन्नू बताओ का खबाए पिबाए।
5: काकी जो है सो दही धरो हो तो ना तो लस्सी तो बना लो, लस्सी को मजा ले लो जाए।
2: हाओ हाओ ठीक है।
3: समीर भैया जब तक लस्सी बन के आ रही अपन मोबाइल से एक अच्छो सो मस्त सो गाना ही सुनवा दो।
1: हाँ लीजिए सुनिए।

0: काकी लस्सी बहुत अच्छी बनी थी, मजा आ गया।
1: बिनु बर्फ को इंतजाम हो तो कछु ठंडी भी हो जाती।
2: मुझे तो बिना बर्फ वाली लस्सी ज्यादा पसंद है।
3: जो है सो काकी तो कछु बना दें, सब स्वादिष्ट हो काकी के हाथ को तो।
4: ज्यादा काकी के भक्त ना बनो। अरे कभू हम भी गुणगान कर लो करो, इन काकी खां हमें न पसंद करो तू समझे।
1: अब राना ही देओ, अपन की चलती तो कोनो गोरी मैम ब्याह के ले आते। वो तो भलो हुए घर परिवार बारन को कि उनने सूरत से ज्यादा सीरत देखी और मोए ब्याह के ले आए।
5: कक्का तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है कि काकी मिल गई। कोनो आड़ी तिरछी मिल जाती तो चैथी के बाल नोच खाती तुम्हारे।
1: जा तो मोए मन की कह दई, दिल खुश होगा।
4: अब ज्यादा बड़बड़ ना करो, वैसे भी ई गर्मी ने दिमाग खराब कर रखो है।
1: ले आओ मैं बिजना डुलाए दे थो।
4: राम भाई ऐसी गर्मी पहली बार है देखी, सड़क पे पापड़ रख दो तो तुरंत भुन जाए।
3: हाँ जो है सो पतो नहीं है जी, सूर्य भगवान काय आए ते नाराजा हैं, आग बरसा रहा एकदम।
1: सूर्य भगवान का काय दोष दे थो, अपनी कर्म नहीं देखा। पेड़ काट दए, पहाड़ उजड़ गए, नदियाँ गंदी कर दई, भगवान की बनाई प्रकृति से छेड़छाड़ करो तो भगवान तो नाराज हुई है।
4: हाँ जैसी करनी वैसी भरनी।
6: हाँ पेड़ काटने से तापमान लगातार बढ़ रहा है।
2: और पता है देश के कई हिस्सों में तापमान इस बार 48 डिग्री तक पहुंच गया है, यह बहुत ही चिंताजनक है।
6: अगर यही स्थिति रही तो जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीना मुश्किल होने लगेगा, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है।
5: अबे पिछले साल ही तो पंचायत ने 50-60 पेड़ लगाए थे।
4: उतर जाके तो देखो केवल 2-8 पेड़ जीवित तो बचे हैं।
1: हाँ सब दिखावा है।
2: पेड़ दिखावे के लिए मत लगाइए, पेड़ लगाया है तो उसकी सुरक्षा भी कीजिए।
3: हाँ जो है सो पेड़ तो कट रहे हैं और वर्षा भी कम होने लगी और पानी को संकट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चलो जा रहा हो।
4: भगवान की कृपा से हमारे गांव में तो पानी की कोनो कमी नहीं है।
1: अपन ने अपनी आदतें न बदली तो बहुत जल्दी ये तभी जल संकट खड़ो हो रहो।
4: अब काहे मैंने ये सो का कर दो।
1: हाँ अपन नहावे में आधा घंटा पानी बहावो बंद करो।
4: अरे गर्मी में आदमी नहाए भी ना का।
1: नहाओ पर ऐसा नहीं कि पूरा तालाब खाली हो जाए।
6: वो देखो काकी सामने गिलहरी मटके के पास से पानी पीकर ऐसे खुश होकर जा रही है जैसे कह रही हो थैंक यू।
5: सही बात है, बेचारे जानवर अनखो बैठवे के लाने तो छाया बची ही नहीं है, ना आसपास घास है और पानी तो दूर दूर तक दिखाता ही नहीं है।
3: हाओ जो है सो जे बेचारे पशु पक्षी कहाँ जाए हैं।
1: गौ मातन खां बैठवे के लाने कौ छाया नहीं बची।
2: इन सबका ध्यान हमें ही तो रखना है, घर के बाहर किसी बड़े बर्तन में पानी जरूर रखिए ताकि जानवर अपनी प्यास बुझा सकें।
6: और हाँ छत पर पेड़ों पर बालकनी में पानी और खाना जरूर रखें ताकि इन गर्मियों में पक्षी भूख और प्यास से ना मरे।
4: एक तो गर्मी से हाल बेहाल है, ऊपर से जा लाइट पेर रही, दिन में 10 बिजली गुल हो जात।
3: हाँ जो है सो बिजली तो गुल होता ही है और संगे मच्छर अलग नाचन लगत।
1: हाँ कान में आके भिनभिनात।
5: अरे मच्छर भी इतने मोटे हो गए, एक काट रहे तो आदमी 2 तक हो जात।
4: मूरी जा समझ में नहीं आत कि जब पैसा पूरा देत बिल टेम पे भरत तो लाइट का नहीं मिलत है।
2: इसका कारण यह है कि कक्का लाइट का उत्पादन कम हो रहा है और खपत ज्यादा है, इस कारण बार बार विद्युत कटौती हो रही है।
3: जो है सो जा तो सरकार की समस्या है, सरकार का उत्पादन बढ़ाओ चाहिए।
6: भरोसे भैया सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन हम सबकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना।
5: तो अब काय बिजली हम घरे बनान लगी है का।
1: कैसी बेतुकी बातें करत,
4: पूरा बैल बुद्धि है। अरे बिन्नू का कह रही तनक सुन तो ले।
5: हाँ तो बताओ हम कैसे बिजली को उत्पादन बढ़ा सकत।
2: पता है बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है।
6: हाँ और इसके लिए हमें बस अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करना है।
3: अच्छा जो है सो वो कैसे, मैं कछु समझो नहीं है।
2: बहुत आसान है, जिस जगह हम बैठे हो केवल वही की लाइट जलाए, दूसरी जगह आप लाइट बंद रखें।
1: अरे जा गलती तो हम सबई करत, बैठत एक कमरा में हो 4 में बल्ब जलात रात।
3: हाओ जो है सो बिना मतलब की लाइट जरत, बिल में ज्यादा पैसा भी लगत और दोहरा

0: बिल्कुल, बिजली बचाने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि हम घरों में सामान्य बल्ब और ट्यूबलाइट की जगह CFL और LED बल्ब का इस्तेमाल करें।
1: सही बात है, ये कम वाट के होत और अच्छी रोशनी देत।
2: जी, इससे बिजली की बचत भी होती है।
3: कछु जने तो ये गांव में इतने होशियार हैं कि सीधे मेन लाइन में कटिया फंसा के फिर बिजली चला है।
4: हाँ, जो है सो इन्हें तो बिल की कोनो चिंता ही नहीं रहता है।
5: जा तो सीधे सीधे बिजली चोरी आए।
0: बिजली चोरी एक कानूनी अपराध है, इसमें जुर्माना एवं जेल की सजा भी हो सकती है।
2: मेन लाइन से सीधे तार फंसाकर बिजली जलाना हमारे लिए सुरक्षित भी नहीं है, कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
1: बिजली चोरी करे को और भुगतत सब जने हैं।
0: हमें इस बिजली चोरी का विरोध करना चाहिए।
3: बिन्नू, जो गांव आए इतने सब एक दूसरे से परिचित हैं, बुराई अलग हो सकत।
2: चिंता मत कीजिए, बिजली विभाग शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखता है।
0: हाँ, आप ऑनलाइन नंबर 1912 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
5: शिकवा शिकायत तो अपनी जगह है, समस्या तो बिजली उत्पादन की है।
2: काकी, इसका सबसे अच्छा विकल्प है सौर ऊर्जा। हमें अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाना चाहिए।
4: अरे जो है सोई के लाने, पैसा भी तो चाहने आउत।
0: इसके लिए सरकार अनुदान भी देती है।
2: हाँ, एक बार सोलर पैनल लग गए तो ना बिजली की कटौती ना बिल की झंझट।
5: भलो होई बिजली बारन को लाइट आ गई।
3: काकी, अब लाइट आ गई तो ई खुशी में कछु खवा पवा दियो।
1: घनसु, जो तुरो अच्छो काम है, लाइट जाए तो कछु खवा पवा दू और लाइट आए तो कछु खवा पवा दू, तो ये तो बस खावे पीवे को बहानो अचाने।
3: देखो तो काकी, कक्का हमारे खावे पीवे पे नजर लगा रहे।
4: अरे घनसु, जो है सो कक्का की तो आदत आ है बड़बड़ करवे की। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हमारी काकी बहुत अच्छी हैं, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे।
1: खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलन लगो, बहुत ही बढ़ गया।
5: बस बस भरोसे, ज्यादा मक्खन न लगा, मैं शिकंजी बना के देत हूँ।
3: जय हो काकी, अपन की जय हो।
0: हाँ, और घनसु भैया, मैं अपने मोबाइल से आपको एक अच्छा सा गीत सुनवा देती हूँ।
3: जा तो मोरे मन की कह दई, एक मस्त गाना सुनवाई दियो फिर।
0: हाँ लीजिए, सुनिए।

0: काकी सिकंजी इतनी बढ़िया बनी थी कि मजा ही आ गयो।
1: अरे घंसू जो है सो मोए तो लगत के जैसे कछु जर रहो हो।
0: कौन को जी जल रहो काय कक्का, मैंने सही कही ना।
2: राम दई हंसू बहुत ही ये भी है ते। फेर जा ढंग से बतात हूँ।
0: वही लगा थे छोड़ दो कक्का, गलती हो गई अब ना कर भी, छोड़ दो।
3: काय हाँ काम तीन थो लग लगू जे है छोड़ो।
2: बहुत ही बड़ो नाटककार यह है।
3: फुर्सतिया बैठी सुदन भर खुरा पास सूजत है।
1: हाँ जो है सो का करें, जेठ असाढ़ के महीना हम किसानन के लाने बहुत भारी होत।
4: वो क्यों?
0: बड़ा तापमान और तेज घाम के कारण काम धंधा कछु चलत नहीं है, खेत खलियान सब खाली पड़े रात।
1: हाँ जो है सो अबे तो एकदम फुर्सते आए हैं हम सबरे।
5: बारिश आने वाली है, इससे पहले खरीफ की फसलों के लिए खेतों की तैयारी कर लीजिए।
2: अरे सुनो समीर बेटा, सही कह रहा हूँ, बदरिया बरसे ई के पहले खेतन की सुध ले लू, नहीं तो पानी आए के बाद हाथ मलत रह जाओ।
0: कक्का हम ट्रैक्टर वाले के पास गए थे बात करवे, लेकिन वो कह रहा हूँ कि पहले पुरानी उधारी चुकाओ।
3: अरे घंसू तुम्हारे भरोसे खेती रही तो भगवान ही मालिक है, कमाई 100 रुपया खर्चा 110 रुपया, ऐसे नहीं चलत।
1: हाँ जो है सो देखो हम किसान हैं, हमें बहुत संभल के चलने पड़त।
2: 4 पैसा बचावो सीखो, नहीं तो जिंदगी भर उधारी में फंसे रहे हो।
4: हाँ घंसू भैया कक्का सही कह रहे हैं, पैसों की बचत करना बहुत जरूरी है।
5: हाँ और इस बार हमें बारिश के पहले गाँव की साफ सफाई भी करनी चाहिए, नालियां साफ होंगी।

0: तभी पानी नहीं भरेगा
1: और सड़क पे कीचड़ भी ना फैले।
2: हाँ, और तालाब की भी सफाई करनी चाहिए ताकि बारिश का पानी जमा हो सके।
3: हाँ, जो है सो बात तो ठीक कह रही तुम बिन्नू, अब की पानी बचाए की जुगाड़ करवो जरूरी है।
4: और सुनो, बरसात में कीचड़ बहुत हो जात, पंचायत में चर्चा करके रास्ता भी सुधरवा लो, नहीं तो खिसक खिसक के आदमी इतने नचत नजर आ है।
2: अच्छा काकी, समय काफी हो गया है, अब हम निकलते हैं। चलो समीर।
0: हाँ हाँ चलो।
5: प्रणाम कक्का, प्रणाम काकी, नमस्ते घनसु भैया, नमस्ते भरोसे भैया।
6: जय राम जी की, जय राम जी की।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युवा चौपाल, जिसमें आलेख है फरीद अहमद खान और कक्का की भूमिका में है शिवांशु प्रजापति, कक्की की भूमिका में है शिवांगी तिवारी, घंसु की भूमिका में है अनुपम खरे
1: और समीर की भूमिका में थे विश्वास तिवारी, रीना की भूमिका में थे सौम्या शर्मा और भरोसी की भूमिका में थे अभिषेक मिश्रा। तो साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: साथियों कार्यक्रम में अब आपको ले चलते हैं एक और चर्चा की ओर, जिसका विषय है सड़क सुरक्षा जागरूकता।
0: आज के आधुनिक युग में यातायात के साधन हमारी जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। वाहनों ने दूरी को कम कर दिया है और सफर को आरामदायक भी बना दिया है,
1: लेकिन इस तेजी के साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं या जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। इसीलिए सड़क सुरक्षा जागरूकता आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है।
0: सड़क पर होने वाले अधिकांश हादसों के पीछे मानवीय गलतियां हो सकती हैं। इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं जैसे यातायात नियमों की अनदेखी, तेज रफ्तार, लापरवाही और ध्यान भटकना, नशे में गाड़ी चलाना, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल न करना।
1: साथियों सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है,
0: जैसे कि हमेशा बाईं ओर चले, सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रखे, गति सीमा का ध्यान रखे, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और संकेतों का पालन करें।
1: सड़क सुरक्षा केवल कड़े कानून बनाने से नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता बदलने से आएगी। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।
0: स्कूली शिक्षा में शामिल होना, सोशल मीडिया और विज्ञापनों का उपयोग करना, सख्त कानून और जुर्माने का उपयोग करना।
1: साथियों सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति या केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।
0: समय की थोड़ी सी भी बचत के लिए अपने या दूसरों के जीवन को खतरे में डालना समझदारी नहीं है। जब हम सब मिलकर यातायात नियमों का सम्मान करेंगे तभी हमारी सड़कें सुरक्षित रहेंगी।
1: एक छोटा सा नारा हमेशा याद रखें, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि कोई आपकी घर पर राह देख रहा है। साथियों ये तो हमने आपसे एक चर्चा की सड़क सुरक्षा जागरूकता पर, और लेते हैं अब एक छोटा सा अंतराल।
4: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
5: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों अब समय हो चला है आज की खास रोजगार सूचना का। अलाहाबाद हाई कोर्ट योग उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
0: पद का नाम है आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट।
1: पदों की संख्या है 543।

0: आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
1: शैक्षणिक योग्यता है किसी भी विषय से ग्रेजुएशन, ओ लेवल सर्टिफिकेट या DCA, PGDCA डिप्लोमा होना चाहिए।
0: आवेदन की अंतिम तिथि है 21 जून 2026।
1: और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.allahabad-highcourt.in पर विजिट करें। साथियों, ये तो हमने आपको दी रोजगार सूची।

0: आज का पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था?
1: हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था?
0: तीसरा प्रश्न है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है?
1: हमारा चौथा प्रश्न है, लेक सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है?
0: हमारा पांचवा प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है?
1: हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
0: हमारा सातवां प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
1: हमारा आठवां प्रश्न है, शून्यवाद नामक सिद्धांत किसने दिया था?
0: नौवां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नार्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है?
1: हमारा दसवां और आखिरी प्रश्न है, वीजा ने किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
0: साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 124 युवावाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन कोड 471001।
1: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchatarpur@gmail.com। इसके लिए आपके पत्र 15 जून 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। साथियों, हम आपको एक बार और बता दें, हमारा पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था?
0: अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था?
1: हमारा तीसरा प्रश्न है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है?
0: हमारा चौथा प्रश्न है, लेक सिटी भारत के किस शहर को कहा जाता है?
1: हमारा पांचवा प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है?
0: हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
1: हमारा सातवां प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
0: आठवां प्रश्न है, शून्यवाद नामक सिद्धांत किसने दिया था?
1: हमारा नौवां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नार्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है?
0: हमारा दसवां प्रश्न है, वीजा ने किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
1: हमारा दसवां और आखिरी प्रश्न है, एक बार और सुन लीजिए, वीजा ने किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? साथियों, पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, सवाल हमारे जवाब आपके अंक 124 युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन कोड है 471001।
0: साथियों, आप हमें इन प्रश्नों के उत्तर ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है youthchatarpur@gmail.com।
1: इसके लिए हमें आपके पत्र 15 जून 2026 की सुबह तक प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल कर सके। साथियों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कल के कार्यक्रम। कल आप सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, साथ ही होंगी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं और होगी रोजगार सूचना। तो अनुमति दीजिए अपनी मित्र शिल्पी अग्रवाल
0: और मोहित सिंह सेंगर को।
1: नमस्कार।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म रिस से ये गाना, जिसमें आवाज दी है आतिफ असलम ने,
1: गीतकार थे समीर, संगीतकार थे प्रीतम।
0: तो दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं सवाल हमारे, जवाब आपके अंक 124 के प्रश्न। तो हमारा

युवा साथियों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रैली करेंगे, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT लोकधारा कार्यक्रम में शाम 6 बजकर

20 मिनट पर कलाकार होंगे अरविंद कुमार तिवारी। शाम 7:20 मिनट पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन का भाग 11। इसके अलावा शोभाराम ठाकुर की वार्ता होगी ग्रीष्मकालीन तिल की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग का प्रबंधन। आज रात 8:00 आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर।

8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज रात आकाशवाणी दिल्ली से हम रैली करेंगे। 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। कल हमारी पहली सभा में बुंदेली सुगंध में सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे प्रेमचंद अहिरवार का बुंदेली काव्य पाठ। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग कल सुबह 8:30 पर आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा। लोकरंग कार्यक्रम में सुबह 9 बजे कलाकार होंगे प्रदीप पटेल और रजनी यादव। एक ही गायक कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे पार्श्व गायक यशुदास के गाए कुछ खूबसूरत से फिल्मी नगमे। कल सुबह 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में लोकराग के अंतर्गत आप सुनेंगे मालवी लोकगीत। 10:30 पर आप सुनेंगे पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। हमारी दूसरी सभा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले होगी। इसमें आप सुनेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12 बजे होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 12:30 पर होगा संग्रहालय से महिला कार्यक्रम होगा दिन में 1 बजे। इसमें आप सुनेंगे आभा खरे का काव्य पाठ। 1:00

0: प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा सचिन राठौर की वार्ता, कम कृषि भूमि से अधिकतम आय कैसे प्राप्त करें। कल रात 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, साइंस एंड टेक। फिल्म संगीत 8:35 पर होगा। कल रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस।
1: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। यह विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रूपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री शामिल है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया, वहीं तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलवदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
0: तो आज
2: अजीत जी जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।

0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
0: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की।
1: जी,
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले।
1: जी,
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
1: जी,
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया।
1: जी,
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
1: जी,
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: है।
0: फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी,
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है।
1: जी,
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेबेना कहते हैं।
1: जी,
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
1: जी,
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी,
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
2: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा,
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: एक्सक्यूज मी।
1: जी हाँ, कहिए।
0: जी, मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता। नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
2: हाँ
1: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
0: जी,
1: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
1: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा, कमल जी,
1: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
1: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

0: ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो, हम उनसे पूछते हैं। वो यहीं के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ, चलो चलो।

ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
3: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
3: ओह,
1: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
3: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
3: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
2: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
1: यही रेस्ट हाउस में।
2: रेस्ट हाउस में
1: जी?
2: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
2: ओके,
1: बाय
2: बाय।
1: ओके।

0: बेटा, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
4: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
3: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
3: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडनमेडु नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना? यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
3: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नीरिया मंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
3: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिरामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और करडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियाँ तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओ, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यही से करते हैं, पेरियार से।
2: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत कभी खुश।
7: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज कलाकार हैं अरविंद कुमार तिवारी। इनकी आवाज में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं एक चेतावनी। संगतकार हैं ढोलक पर लक्ष्मण आदिवासी और बैंजो पर लखन वंशकार।
8: स्वर्ण का माल

अभी आप सुन रहे थे ये चेतावनी, कलाकार थे अरविंद्र कुमार तिवारी। इन्हीं की आवाज में लीजिए अब एक लोक शैलीबद्ध चेतावनी हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: अरविंद कुमार तिवारी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोक शैलीबद्ध चेतावनी लोकगीत। संगतकार थे ढोलक पर लक्ष्मण आदिवासी और बैंजो पर लखन वंशकार।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर हिल्स ग्वालियर।
3: ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना
7: RBI कहता है
8: करो से सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
10: किसी एक व्यक्ति की जमीन घर गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है गिरवी रखने से बचा है तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।

0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: करके मिल लीजिए एक और लोक शैलीबद्ध लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं अरविंद कुमार तिवारी से।

अब ये लोक शैलीबद्ध गीत आप सुन रहे थे अरविंद कुमार तिवारी से। इन्हीं की आवाज में सड़क सुरक्षा पर एक लोकगीत अब हम आपको सुना रहे हैं।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसमें आज कलाकार हैं अरविंद कुमार तिवारी। इनकी आवाज में लीजिए अब हम एक पर्यावरण पर आधारित लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं। संगतकार हैं ढोलक पर लक्ष्मण आदिवासी और बैंजो पर लखन वंशकार।
5: प्रकृति का

0: पर्यावरण पर आधारित लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे अरविंद कुमार तिवारी। और लीजिए कार्यक्रम के अंत में इन्हीं की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं साक्षरता पर आधारित ये लोकगीत।
1: सबरे काम छोड़ के

अरविंद कुमार तिवारी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये साक्षरता पर आधारित लोकगीत। संगतकार थे ढोलक पर लक्ष्मण आदिवासी और बैंजो पर लखन वंशकार। इसी लोकगीत के साथ ही बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गुमशुदा सूचना।

सूचित किया जाता है कि ग्राम महमूद नगर निवासी सीमा, पति का नाम नीरज कुमार, थाना कदौरा, जिला जालौन, 30 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे घर से कदौरा के लिए निकली थी। तब से आज तक उनका कोई

सुराग नहीं मिल सका है। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी मिले वे सूचित कर सकते हैं। हुलिया इस तरह है, लंबाई लगभग 5 फुट, रंग गोरा, आंख, कान, नाक और कद औसत। पहनावे में हरे रंग की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और पैरों में काले कलर की सैंडल पहने हैं। जिन्हें भी इनके बारे में जानकारी पता चले वे इन मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7822949084। एक अन्य मोबाइल नंबर है 9794070148। क्षेत्राधिकारी कालपी का मोबाइल नंबर है 9454401429। थाना अध्यक्ष कदौरा का नंबर है 9454403594 और हल्का इंचार्ज एसआई सत्यनारायण सिंह का मोबाइल नंबर है 8924096673। सूचना समाप्त हुई।

एक और गुमशुदा सूचना सुनिए। नीलम देवी, पति का नाम शिव पूजन, ग्राम भगवानपुरा, पिता का नाम सोबरन सिंह, निवासी ग्राम चांदनपुरा, थाना रामपुरा, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। 28 वर्षीय नीलम, ग्राम भगवानपुरा, थाना माधोगढ़, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से दिनांक 9 मई 2026 को सुबह करीब 9 बजे अपने घर से कहीं चली गई हैं। इनकी गुमशुदगी थाना रामपुरा में करवाई गई है। जिस किसी को भी इनके बारे में जानकारी मिले वे इन नंबरों पर सूचित कर सकते हैं। हुलिया इस प्रकार है: चेहरा गोल, रंग गोरा, आंख, नाक, कान और कद औसत, उम्र करीब 28 वर्ष। गुमशुदगी के समय लाल रंग का सलवार सूट पहने थी। संपर्क मोबाइल नंबर है 8707774939। क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ जनपद जालौन का मोबाइल नंबर है 9454401430। थानाध्यक्ष रामपुरा जनपद जालौन का मोबाइल नंबर है 9454403603। इसके अलावा विवेचक जितेंद्र सिंह थाना रामपुरा जनपद जालौन का मोबाइल नंबर है 8707774939। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ यादव, दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम को श्री मोदी ने भारत मंडपम में भाजपा एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह जनता के उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास का प्रमाण है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल के लालघाटी स्थित गुफा मंदिर पहुंचे और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व प्रार्थना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान हनुमान से प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है। वहीं प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने श्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि
1: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उन्होंने इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और केवल यही नहीं, उन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगातार इस देश का नेतृत्व करते रहे, इसी कामना के साथ आज इस कार्यक्रम का हमने आयोजन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बार बैठक का विषय विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में समावेशी मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों मानव पूंजी, रोजगार, स्वास्थ्य एवं पोषण और सभी के लिए समानता पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल विचार विमर्श करेंगे। इंदौर में चल रहे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने आज ग्रामीण हाट का भ्रमण किया। विदेशी मेहमानों ने प्रदेश के कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प और एक जिला एक उत्पाद योजनाओं के तहत प्रदर्शित उत्पादों में रुचि दिखाई। रीवा के जीआई टैग प्राप्त सुंदरजा आम और अन्य किस्मों का स्वाद लेकर प्रतिनिधियों ने उनकी गुणवत्ता की सराहना की। मंडला की मिलेट क्वीन लहरीबाई के दुर्लभ बीज संग्रह ने भी विदेशी प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। मृगनैनी, प्रकृत शिल्क, हेम्प क्लोदिंग के स्टॉलों पर प्रदर्शित पारंपरिक एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की भी मेहमानों ने प्रशंसा की। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट और भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन हलफनामे में कथित अनियमितताओं के आधार पर कल खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरूआत

0: की थी। इस अभियान ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन 10 वर्षों में रतलाम जिले में हजारों गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्राप्त हुआ है। पेश है हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव पूर्ण जांच और सुरक्षित मातृत्व देने का अभियान रतलाम जिले में भी 10 साल पूरा कर चुका है। अब तक हजारों माताओं और नवजातों को इस योजना से नवजीवन मिला है। रतलाम के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 100% प्रसव पूर्ण जाँच का लक्ष्य सफलतापूर्ण हासिल भी किया जा रहा है। विशेषकर आदिवासी अंचल में समय रहते उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनके कार्ड पर लाल स्टीकर भी लगाए जा रहे हैं। इसके तहत प्रसव के 45 दिन बाद तक निरंतर फॉलो अप और महीने की 9, 8 और 27 तारीख को महिलाओं को लैब टेस्ट पूरी तरह निशुल्क हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि पिछले 5 सालों में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में अच्छी कमी आई है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। इस खास मौके पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी कुल सचिवों और प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माने जाने के प्रावधान को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यह नियम साल 2001 में लागू हुआ था जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों में अयोग्य माना जाता था। वहीं प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत कोई भी पंचायत सचिव अपने गृह ग्राम या ससुराल की पंचायत में नहीं रह सकेगा। जिस पंचायत में सचिव का रिश्तेदार सरपंच या उपसरपंच बन जाएगा वहां से भी तबादला अनिवार्य होगा। वहीं 10 साल या उससे अधिक समय से एक ही पंचायत में जमे सचिवों को प्राथमिकता से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2023 से अब तक 5,39,00,000 से अधिक हितग्राहियों को 74,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है। ये जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के बीच मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ खजुराहो में जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 18 जिलों में आंधी बारिश हुई है और जबलपुर तथा दमोह में ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर भाजपा विधायक अरविंद पटेरिया के साथ पूजा अर्चना एवं कन्या पूजन किया। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत शहडोल जिले में जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों के पंजीयन का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। मंदसौर में 132.67 करोड़ रुपए की लागत से 1000 कैदियों की क्षमता वाली आधुनिक जिला जेल के निर्माण को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। समान नागरिक संहिता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल खंडवा में आयोजित की जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना परिसर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 50 ग्राम कोटवारों को पुलिस की कार्यप्रणाली, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। और कटनी में छात्रों की सुरक्षा एवं बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले की जर्जर एवं मरम्मत योग्य 82 शालाओं का कायाकल्प किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने श्री मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर गुफा मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ यादव। दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और ब्रिक्स प्रतिनिधियों ने आज इंदौर के ग्रामीण हाट का भ्रमण किया।

0: हम आकाशवाणी
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन खो नंदनी बहन की राम राम। और भैया बहन हो देखो अबे तो खूब गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी से अपने भैया बहनन को बचाव जरूर करने हैं। ऐसी गर्मी में अगर तनक ही लाइट तनक देर की लाने चली जा तो देखो बहुत ही परेशानी हो जात के नहीं। बिजली को उपयोग करने अपन को, दुरुपयोग नहीं करने है ना। बिजली की देखो चोरी चकारी करने आए कछु भैया बहन कटिया फंसा के बिजली की चोरी करत है कि देखो बिजली को बिल न भरने पर है। तो देखो अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करने आए, बिजली को अपन मीटर लगवावे और समय पे बिजली को बिल जरूर भरवे। बिजली की चोरी रोकवो अपने सभी भैया बहनन की जिम्मेदारी बनत है। अवैध कटिया कनेक्शन जोन भैया बहन करत है उमे देखो बिजली की चोरी की कार्रवाई भी होत है ना। बिजली चोरी रोकवे को मुख्य उपाय तो जो है कि अपन स्मार्ट मीटर लगवाओ, अवैध कनेक्शन की जानकारी बिजली विभाग को दो, अपने मीटर की नियमित जांच करत रहो, रीडिंग समय समय पर चेक करत रहो। और भैया बहन हरो देखो बिजली की चोरी करवे पे कानूनी कार्रवाई सोई होत है। इसे देखो हम तो सभी भैया बहनों से जय कहे हैं कि बिजली की चोरी अपन खा बिल्कुल नहीं करनी है। और अपने देखो जितने आस पड़ोस में जोन भैया बहन हैं उनको भी देखो जय सीख अपने भैया बहनों को देने हैं कि देखो बिजली की चोरी करवो कोनो अच्छी बात नहीं है। तो देखो अपने सभी भैया बहनों से हम तो जय कहे हैं कि देखो बिजली की चोरी चकारी बिल्कुल न करवे। और भैया बहन देखो बतकाओ तो कहते ही रहे, मिल रहे इब्राम के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और भैया बहन हो देखो संदेशन के बाद अपने भैया बहनों को फिर से स्वागत है ग्राम सभा कार्यक्रम में। और भैया बहन हो देखो अबे तो बाजार में खूब ही आम

0: आ रहे हैं ना। अपनी बहनें देखो कच्चे आमन को अचार भी रखती हैं, तो हम अपन को बता रहे हैं आम के अचार की रखवे की विधि। सबसे पहला तो देखो अपन को आम साफ पानी में धोने हैं, फिर आमन को छोटे छोटे टुकड़न में काट लेने हैं और फिर धूप में थोड़ी देर के लाने सुखा लेवे। इके बाद अपन खा कछु सामग्री सोई लेने हैं। अपन को देखो तेल लेने हैं, हल्दी पाउडर है, सौंफ, मेथी, कलौंजी, राई और अपन देखो पीली सरसों हो तो सुबह भी अपन ले सकते हैं और नमक अपन स्वाद के अनुसार लेवे। मेथी और राई को तवा पे तनक भूंज लेवे और फिर पीस के अपने कटे भए आमन में मिला लेने हैं और तेल को तनक गरम करके ठंडो हो जाए उके बाद अपने अचार में मिला देवे। सो और फिर मिलावे के बाद जा सामग्री फिर अपने डब्बा या बरनी में अपन रख लेवे। एक साल तक देखो अपनो अचार अच्छो रखो रहे, खराब ना हो है। तो ई तरीका से देखो अपनी बहने अचार भी रख सकती हैं आम को। और भैया बहन हरो अब लेते हैं ब्राम।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: और भैया बहनों देखो संदेशन के बाद अपने भैया बहनों को करवा रहे हैं मनोरंजन और सुनवा रहे हैं जा चेतावनी। जीखों गा रहे हैं भैया मुन्ना लाल सैनी। तो लो अपन सुने, अपने भैया बहन सुने जा चेतावनी।

अबे अपन ने देखो कैसीनो नी जा चेतावनी सुनी, जी खो गा रहे थे भैया मुन्ना लाल सैनी जू। और भैया बहन हो देखो अपन खेती किसानी करत है, खेती करबो अपन को मुख काम है, हैं कैसे देखो अपने किसान भैया बहन दिन रात मेहनत करत हैं। तो देखो अपन को सभी भैया बहनन को जोई के वो है कि जितने भी खेती किसानी करवे के कृषि यंत्र हैं उनको देखो सुरक्षित रखबो बहुत जरूरी होत है। जा सब अपने की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित रखबे, जितने भी कृषि यंत्र हैं उनको सही तरीका से रख रखाव बहुत जरूरी होत है। अब जो नैया के देखो काम न करगा तो ना उनकी देखाई भाल ना करें, देखो अपन को देखभाल करने है। और देखो कैसे बरसात को टाइम भी आ रहा है, अपनी कृषि यंत्र बरसात में सुरक्षित रखने हैं, कैसे पानी में देखो उनमें जंग लग जाते हैं, खराब होने को डर रहते हैं। तो अपने कृषि यंत्र ज्यादा से ज्यादा दिना तक काम करवे, ई के लाने अपन खास सही तरीका से रख रखाव करने हैं। उपयोग करवे के बाद देखो अच्छी तरह से साफ करके जंग रोधी तेल लगा के छाया में रख देवे। कृषि यंत्र ने अपने भैया बहनन को काम कितना आसान कर दो है, घंटन को काम देखो मिनटन में हो जात। अपने भैया बहन देखो जो काम में दिन रात लगे रहते घंटों लगे रहते वो काम अब जल्दी हो जात। और तो देखो अपने सभी भैया बहनन को जो काम करने हैं कि देखो ऐसी मशीनें हो गई हैं कृषि यंत्र की, चाहे देखो बुवाई की हो चाहे कटाई की हो चाहे बिघाई की। तो अपने भैया बहनन को जो ही कर्तव्य है कि उनको सुरक्षित स्थान पर रखने हैं। और भैया बहन हो देखो अब बारी है आज की धारावाहिक की, तो सुनत है अपन जो धारावाहिक अटकन चटकन इको भाग 11, तो लियो सुनो।

0: ऐसे अटकन।
1: हाँ भैया अटकन।
0: अरे आज भंसराज है उसे तुम आने मने से काया बैठे जो है सो का कछु होगा के कोई से लड़ा पड़े।
1: अरे आ हाँ अटकन भैया, आज रात भर आंख नहीं लगी है।
0: काहे?
1: एक तो मच्छर ची थत रहे और बिजली से रात ही भर नहीं आई आज पनबिसरी।
0: झा तो साची कही तुमने कि बिजली की तो बड़ी हैरानी है चटका।

0: अरे नौ ट्रांसफार्मर बदल गो
1: हो
0: तो बिजली नहीं उत्पन्न बेसरी। अरे यही तो खेती किसानी की बेरा,
1: हो
0: तो सारे किसान दिन भर बाटा ही हेरे बैठे जा तो बिजली की।
1: अबटकन भैया, जा समस्या तो गाउन गाउन की नोई है।
0: हाओ
1: बिजली 1 घंटा खां आई और फिर गई सो दिन भरे खां चली जा,
0: हाओ
1: और बिल सो बिलैया है।
0: हाओ
1: जैसे ही चुखरवन के बिल नहीं हो जात खेत में लंबे चौड़े,
0: हाओ हाओ
1: ऊसे ही बिजली विभाग के बिल आउ भारी लंबे चौड़े चौड़े पैसन
0: अच्छा
1: मारे
0: अच्छा
1: है। कायटकन भैया, ई को कछु उपाय नहीं हो सकत। कम से कम जरूरत भर खां बिजली तो अपन उनका मिलता ही रहा जो है सो।
0: अब उपाय तो साफ कछु है चटकन।
1: कैसो?
0: अकेले अपने भर सोचे से काल होत बताओ है, जब साफ जने मिलके ई बात खां गुने सुने तभी कछु हो सकत।
1: कायटकन भैया, सब जनन को बिजली से का संबंध है? जो तो वही बिजली वाले जाने सोचे परमेश्वरी के, जब बिल लेत तो बिजली तो देवे ही कम से कम। ई में हमाओ तो माओ का हो जो हम और सोचे।
0: चटकन होत काहे नहीं है। अरे पहला सोचो कि बिजली काहे से बनत, पानी से
1: हो
0: है ना,
1: पानी से, पानी
0: और
1: से।
0: जब पानी ही ना हुई है, पानी की कमी हुई है, तो बिजली कहां से बनी जात।
1: वाटकन भैया वाह, अपन सोई ऐसी बातें करत कहे पानी हम तो मां बरसाई। जा गलती तो भगवान की नो ही है, भगवान की। इमे हम तो मोरे का कर सकत
0: अरे
1: है।
0: चटकन तुम सिर्री के सिर्री ही बने रहे।
1: ए?
0: अरे बा खबर करो कि पानी काय से बरसत। पढ़ो
1: हाँ
0: नहीं है किताबन में,
1: कैसो?
0: पेड़ पौधन से,
1: हाओ
0: जंगलन से, और जा जंगल कम होत सोते पानी सोई कम बरसत चटकन।
1: अब आई समझ में अटकन भैया अपन की बात। और देख रहे अपन कि
0: हाओ
1: जंगल के जंगल लगे कटवे, रात के दिन के जब आदमी को दाव पर होता भाई उन्हें दई कुलरिया और धरो डणू का और चले जाए, चूकत नहीं है को भी तो।
0: चटकन ऐसा है कि चाहे कोनू भगवान की दई प्राकृतिक चीज होवे
1: हाओ
0: और चाहे सरकार से कोनू सुविधा मिली हो अपन खा, तो साहब के मन में जाने का बिड़ो रात एक ही बात रात उनके मन में कि जितो बने उजागर
1: हो
0: चोरी से
1: हाँ।
0: आंखें बचा के उनको ज्यादा से ज्यादा गलत फायदा उठाओ,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: यही से साहब जने आज देखो परेशान फिर रहे।
1: जा बात तो अपन ठीक कह रहे। चाहे वह चीज अटकी होवे उन्हें और
0: आओ
1: चाहे ना अटकी होवे, मौका लगो और धर ले घर में। अब नकरिया ले वे बैलगाड़ी जात, उके बीच में जरूर कोनो न कोनो बड़ो पेड़ो काट के धर लिया आदमी
0: हाओ हाओ
1: है। घरन में देखो जो बिजली के जहाँ एक ही बल्ब से भलो काम चल जाने, अकेले हर कोठा में बिल्कुल दीवारी सी।
0: अब ऐसा है चटकन, अबे भी कई गांवन में मीटर नहीं लगे, रोज रात भाई और तारन से फसाया ठुड्डा और
1: हो
0: चल रहे बड़े बड़े हीटर। अब सरकार तो आबादी और मांग के हिसाब से बिजली बना बनाऊ भैया,
1: हो
0: अब बीच में इतनी चोरी हो जात तो बिजली की कमी तो बनी ही जाने।
1: ऐसा ही है।
2: काय अटकन चटकन भैया,
1: हाँ तुलसी भैया,
2: का हो रहो दरबार? कछु हम ही सुन लेते।
1: अरे आओ आओ तुलसी भैया, अरे अपन के संगे काकी सुई है। आओ
0: आओ
1: आओ काकी, आओ राम राम।
3: आओ चटकन।
1: है जी, यह हम और बतकाव कर रहे थे बिजली के बारे में के आदमी अपनी सुविधा के लाने चोरी से बिल्कुल नहीं चूकत, चोरी जरूर करत बजो है।
3: का बताइए अटकन चटकन, जिनके घरे मीटर लगे सुबह बिल भर भर के परेशान है,
1: हो
3: और जो रात के तार टांग ले पे बड़े मजे में है। चाहे जितनी बिजली खर्च करो और पैसा भी नहीं लगने।
2: हाँ
0: जितना बिल दे है।
2: काकी, जा चोरी गांवन भर में नोई, शहरन में सोइया हो, जहाँ नल लगे सो भीतरे खदरा खोद के डाल ले पाइप,
0: हाँ
2: ऐसे ही बिजली को हाल आए भैया रो।
3: अरे हाओ, अब मैं का बताऊं, मोरे दौरा जोन उ नलका नहीं लगो हैंडपंप, मुखो रात दिन ऐसो भटर भटर चलाओ जैसे उसे दुश्मनी हो। मैं तो सोलो नहीं पाऊ, और बिगड़ जात सो सुधरवाए सरपंच साहब, फिर को सुधरवावे लो नहीं।
0: अरे जे सब समस्या है तो काकी गेरों गेरा है, अपन भगवान तो नोई कि सब ठीक कर सकत।
1: अकेले अटकन भैया,
0: हाँ
1: कछु
0: चटकन
1: ना कछु तो अपन हाँ सोच नहीं पर है। ऐसे काम कब लो चले तुम्हें बताओ। हमने एक बात कम पढ़ी है
0: का
1: कि अगर राजा ही हंस नीर छीर के अलग अलग करवे में आलस करे तो फिर संसार में ऐसा कोई दूसरो नहीं जो पानी को पानी और दूध को दूध अलग अलग कर सके।
2: अब देखो ऐसो है अटकन चटकन भैया,
1: हाँ
2: कम से कम अपन अपने गांव में तो जो रोक ही सकत क्या नहीं रोक सकत।
3: और आदमी देखा देखी ज्यादा करत, इन सब बातन से अपनो गांव खुशहाल हो जाए तो दूसरे गांव वाले भी अपनी देखा देखी करके सुखी रहे, है कि नहीं?
0: क्या बात कई काकी ने साजी है, उम्दा बात। अपन एक काम करो कि सरपंच साहब लो चल के और गांव में मुनादी करो।

0: कि को आज से बिजली की चोरी ना करे सभ्यार ना ठोड्डा फसाए और जो को करे है सो उको सामाजिक बहिष्कार करो जे है और न नकनिया काटे हरीरी।
1: अटकन भैया और संगे संगे बिजली चोरी के कानून में सोई अपन उन्होंने सजा देबो अभी जुर्मानो देबो अभी हुए तो दो ही करो अभी और अगर इमे भी कमी रहे और ना माने तो फिर जो हम बारह हाथ को लठन हो इधर कैसे नहीं
0: माना कानून अपने हाथ में नहीं लेने आओ जो है सो। अरे गांव में 10-12 लड़कन की बनाओ एक टोली
1: हो हो।
0: सो सब जने देखे रहा है को पेड़े न काट पाए हरी रे और को बिजली के ठोड्डा न फंसा पाए रात के।
1: ठीक है अपन ने अकेले एक बात करें बाजन टोली बने ना
0: हाँ।
1: उके मुखिया रे भी हम
0: हाँ बिल्कुल रे हो
1: है ना
0: हाँ।
1: और एक बात और है अटकन भैया यही कानून में अगर विदे रहे हो तो कछु नहीं हो सकत ऐसा ही होते रहे जैसो अबे हो रहो जब लो जो को चोरी करे वो पेड़ो काटे तो मार है ना तो ध्वंस तो हम दिखाई सकत
0: जो तो हो सकत।
2: और अटकन चटकन जो तुमने इतने नेक काम को बीड़ा उठाओ है उमे हम तुम्हारा सोई सहयोग करें
1: हाँ।
2: सुनो कछु महिलाएं हम जोर रहे हैं सो हम भी आज से देखा तक ही कर भी और ऊ के मुखिया रहे भी अकेले हम
3: बिल्कुल काकी सब तैयार हैं जो कौन कौन बुरा काम आए इमें तो कानून भी अपनी मदद कर है।
0: और एक बात और हो सका चटकन भैया
1: कैसी भैया
0: कि जॉन पंच भैया अपने पंप चलाओ खेती के भी कोनो न कोनो रूप में देखो बिजली की रकम तो देता ही है
1: हो हो।
0: है ना अब रसीदे कहीं ना लेवे
1: बिल्कुल बाउन की कमी है उन्हें रसीद जरूर लेने तो काकी एक काम हो जाए
2: हाँ।
1: तुम जाओ और कछु जनी अपने संग खा ढूंढ लो
0: हाओ
1: है
0: हाँ।
1: काल अंधे आई से जो देखियो
2: हाँ।
1: कि घर से कुलरिया लेके जंगल की लाने को आजाद नकनिया काट भी
2: हाओ, हाओ।
1: है फिर हमें बताइयो हम देखा तू
2: हाओ तो मैं जात हूँ
1: हाओ।
2: अबे तनक रोटी पानी करने तुम और सो अपनो विचार बना ले यो कि का कैसो करने अब ऐसो मैं अकेले जात हूँ काय मोर कुल सारो काम करो घर
3: का है अटकन चटकन भैया
1: हाँ भैया
3: जंगल जावे के लाने तो दो ही गेले हैं
1: हाँ हाँ
3: एक तला की बधान पे हो और एक बाबा की टीक पे हो
1: हाँ
3: सो आज रात के तनक दूर जाके ओता ही न बैठ हो जाए
1: हैं
3: झूली पर ही गई
1: हाँ हाँ
3: सो अपन रात ही के देखे को आज पेड़ काटा दो
0: हाँ हाँ का चटकन
1: हाँ भैया
0: अरे अपन तीनों जने तो कुल है
1: अरे बहुत है
0: अरे दो ही चार रोज देखने फिर तो साफ डरान लगे जो है सो
1: हाँ। चलो अटकन भैया चलो तो
0: हाँ।
1: रात यह हो जा रही और ठंड सो कुल होने लगी अब देखो तो अपन सब जने उन्ना तो पैर ही अब काई को डरा है का
0: हाँ।
1: है? चलो चलो चलो चलो

0: अरे चले चलो, अपन खाऊ पीला पहाड़ के मुहाने लो बैठते हैं। चले चलो चटकन, ते डरात गया है।
1: अब रात तो हो गई, डर तो लगता ही है अटकन भैया। अकेले अपन और हैं तो हमारे संगे तो हो।
2: हो गए जा तुम
1: अकेले, ज्यादा दूर ना जाओ ते। अरे कौन शेर तेंदुआ ना मिल जाए।
2: शेर तेंदुआ ते कहाँ भरी, चटकन तुम सोई तनक और गाँव चलो। फिर कहूँ आगे आगे बार भी और तई ताप भी।
0: आहा आहा आगे नहीं बार ने
2: काए,
0: नहीं तर आगे देख के आदमी अपने अंगरहु कैसे करे।
2: अच्छा तो सही बात है,
0: लियो इतई यही ठोर पे बैठो सब जने, चुपचाप बैठियो हल्ला भन्ना करियो। काय अटकन भैया?
2: हाँ
0: जो चटकन के सो कपल लगो।
1: अरे अटकन भैया तुम्हारे हाथ जोरा।
0: इखा का हो?
1: अरे मोए तो भारी डर लग रहा हो रे, मोए खर लो तो करे आओ अपन के पाँव पर हो। अरे मुए तन तन से तो बाल बच्चा, अरे का मारे मारे फिरे भैया। मैं तुम्हारे हाथ चोरत भैया, मोए ना पारो ई फदाल में, मुझे तो घर लो कर दो राम धई तुम्हारी जय हो जाए।
2: अरे चटकन हाथ जोड़ रहे तुम अपने और हमसे कार के तुम्हारे हाथ जोड़ रहे। बैठो ना हल्ला न कर, मुंह दिखा झोले पटरे में कोई आओ तो देख, मुंह दिखा साम।
0: आओ हाओ पत्ता चरचरावे कोई एरो सो मिला।
1: अरे भैया मैं काट के मुए घरे पहुंचाया हूं परवेश रे, अब ना हो तुम्हारे और के जंजाल में। अरे भैया मुए घरे पहुंचा के छोड़ो आओ पनवेश रे। अरे काय खाम।

0: मोए नाक में प्राण खुमा दिए तो राम दई।
1: चटकन भैया तुम न डराओ, काहे से मैं डरात हूँ। अटकन भैया मोए तो लगा कि भूत चालू अब।
2: हाँ भूत दिखा लगो तो मैं कहे नहीं।
1: अब आज नहीं बचत दिखा प्राण।
2: अरे चटकन तेरा डरा शेर खा और तुलसी डरा रहा हूँ भूतन खा है? अब कैसे काम हो वाले जे है? अरे शांत बैठे रहो, हम तो दो कुहाओ। अरे हम तो बैठे हम, अरे हमें तो लगा कि कोनो मूड़ पे धरे नगर यहाँ चलू आओ।

0: तो दिखा लगो तो मैं कहे नहीं।
1: अब आज नहीं बचत दिखा रहा है।
0: अरे चट कर, तेरा डरा फेर खा और तुलसी डरा रहा भूतन खा है। अब कैसे काम हो वाले जय। अरे शांत बैठे रहो, हम तो दो कुहा। अरे हम तो बैठे हम, अरे हमें तो लगा कि कोनो मूड़ पे धरे नगर यहाँ चलो आओ। बैठे रहो तनक शांत। अरे ये जमाने में काहे के भूत भूत बैठे रहो शांत।
1: अरे अबे कछु दिना पहले है ना यही जगह पे वो हरचरिया है ना, हरचरिया
0: हरचटिया
1: आओ वहाँ भर दोपहर चुड़ैला ना ले गई थी। आओ
0: देखो तो
1: आओ आओ।
2: अरे भैया वही यही जगह वो किसनवा खा बहुत तिंदुगन वही मिलो तो यही ठोर पे तुम्हारी जे हो जाए वो तो पहुँचाया करता। अरे वो भगवान कैसे आ गो तुम मरण के संगे बचा लियो। अरे भैया वो तुलसी भैया तीन सुन ले। अरे मुए ले अरे जो अरे बाप रे मर का। अरे बाप रे मरवा डारो ये अटकन तुलसी ने तो वो ईश्वर अब तुम्हें बचाइयो मुए। हे भगवान हे शंकर जू हे बजरंग बली।
0: अरे अरे कौन डराओ हम का जान।
1: अरे मुझे तो मैं तो जो चलू
0: कौन डराओ जे डरे जरवा मतलब के पत्ता तक सो जोरो जल्दी से और जाहे देखो माचस सो जलाओ आगी। अरे आगी से जो है जंगली जानवर सब दूर भाग जात और भूत उत खा धरे चलो।
2: अरे

0: अबे अपने भैया बहन धारावाहिक अटकन चटकन सुन रहे थे इको भाग 11। और भैया बहन हाँ देखो, ग्रीष्मकालीन फसल में कीट और रोग राई लग जाते हैं, तो देखो इकी रोकथाम अपने भैया बहन कैसे करें। इके लाने हम अपने भैया बहन के लाने लेके आए हैं वार्ता। विषय है ग्रीष्मकालीन तिल की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग। वार्ताकार है शोभाराम ठाकुर। तो लो अपने भाई सुनो।
1: नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथी हो, तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है। अगर समय पर कीट और रोग की पहचान करके सही नियंत्रण किया जाए तो किसान भाई अच्छी पैदावार अहो अधिक लाभ प्राप्त कर सकत है। किसान साथी हो, तिल की फसल में सही समय पर कीट और रोग की पहचान बहुत जरूरी है। कई बार किसान नुकसान समझ नहीं पावत, जब तक पहचान हो तब तक फसल को भारी नुकसान हो जाता है। प्रमुख कीट और उनकी पहचान, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीगेस्टा पत्ती और फल छेदक कीट। किसान भाइयों, एंटीगेस्टा तिल का सबसे खतरनाक कीट माना जाता है। पहचान कैसे करें? पहचान, इस कीट की छोटी इल्ली हरे रंग की होती है। शुरुआत में यह पत्तियन को मोड़ के अंदर रहत है और पत्ती खावत है। बाद में यह फल्ली फूल और फलियन में छेद कर देत है। अगर खेत में पत्तियां मुड़ी दिखे, जाला जैसा दिखे या फलियन में गोल छेद नजर आवे, फलियों के अंदर दाना टूटा मिले, तो समझ लो एंटीगेस्टा का प्रकोप है। नुकसान, नई बढ़वार रुक जाती है, फलियां खराब हो जाती है, दाना कम बनाते है, उत्पादन बहुत घट जाता है और तेल की क्वांटिटी भी की मात्रा भी कम हो जाती है। रोकथाम, खेत की नियमित निगरानी करना चाहिए। प्रभावी टहनियों को तोड़ कर नष्ट करो। फेरोमोन ट्रैप लगाओ। दवाइयां का उपयोग करना चाहिए। दवाइयों में स्पिनोसेट 45 SC एट द रेट ऑफ 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर इमामेक्टिन बेंजोइट 5 SG 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दवा का छिड़काव करना चाहिए, ताकि इस कीट का प्रकोप नियंत्रण किया जा सके। दूसरा कीट की बात करने जा रहे हैं, जिसमें है तिलहाक मौत। किसान भाइयों, तिलहाक मौत की बड़ी इल्ली तिल की पत्तियों को तेजी से खावत है। यह पॉलीफेगस इल्ली है। यह सभी प्रकार के पौधों को खाती है। पहचान, बड़ी हरी या भूरे रंग की इल्ली। इल्ली के पीछे सींग जैसे उभरा भाग रात में ज्यादा सक्रिय रहता है। नुकसान, पत्तियां तेजी से खा जात, केवल डंटल बच जात, पौधा कमजोर हो जात। अगर खेत में अचानक पत्तियां गायब दिखे तो रात में जाकर देखो, बड़ी इल्ली मिल सकत है। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए इल्ली हाथ से पकड़ के नष्ट करो। खेत की नियमित निगरानी करो। पक्षियों को बैठने के लिए एक लकड़ी

0: भी फील्ड के अंदर लगाना चाहिए। इस कीट की रोकथाम के लिए दवाई क्विनालफास 25 सीसी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे इसकी रोकथाम हो सकती है। या क्लोरीफायरीफास 20 सीसी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी इस दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है गालफ्लाई तिल की कोमल टहनियों और फूलन को नुकसान पहुंचावत है। पहचान, तना या शाखा पर गांठ जैसे सूजन बनना, पौधा टेढ़ा दिखना, प्रभावित भाग मोटा होना, ये गांठ के अंदर कीट का लार्वा रहता है जो फल के अंदर के भाग को खा जाता है। नुकसान, पौधे की बढ़वार रुक जाती है, फूल फलियां कम बनते हैं, उत्पादन घट जाता है और फूल गाल के जैसे उभरा हुआ फूल दिखाई देता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित शाखाएं काटकर नष्ट कर देना चाहिए, समय पर बोनी करना चाहिए, खेत को साफ सफाई रखना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथॉइड 30 सीसी 1.5 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करने से इस गाल फ्लाई कीट का रोकथाम की जा सकती है। दूसरा है अपना इमिडाक्लोरोपीट 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी इसका छिड़काव करने से इस कीट की रोकथाम की जा सकती है। लीफ हॉपर यानी फुदका, छोटा हरे रंग का फुदकने वाला कीट होता है। पत्तियों का किनारा पीला पड़ना, पत्तियों नीचे और मुड़ना, पौधा कमजोर दिखना, अगर पौधा हल्का पीला कमजोर दिखे तो पत्ती उलट के देखो, छोटे फुदकने वाले कीट दिख जाए तो लीफ हॉपर है। यह नुकसान रस चूस के पौधों को कमजोर कर देता है, बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां सूखने लगती है। इसकी रोकथाम के लिए खरपतवार हटाओ, खेत के साफ सफाई रखना चाहिए, पीला चिपचिपा ट्रेप लगाना चाहिए और रासायनिक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इमिडाक्लोरोपीट 17.SL 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी का छिड़काव करना चाहिए। चौथा कीट है मेरिडबग। मेरिडबग कोमल भागन को नुकसान पहुंचावत है। फूल झड़ना, छोटी फलियां काली पड़ना, फलियों की टेढ़ी मेढ़ी बनना, कीट पतला और हल्का भूरा या हरा दिखता है। यह नुकसान फूलन का झड़ना, दाना कम बनना, उपज घट जाती है। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए खेत की निगरानी करो, समय पर बोनी करो, दवाई लेमड़ा साइलोथ्रिन 5 सीसी 1 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करने से इस कीट का रोकथाम किया जा सकता है। अब बात करते हैं रोगन की पहचान, फिलोडी रोग। किसान साथी हो, फिलोडी तिल का बहुत खतरनाक रोग है। पहचान, फूल पत्ती जैसी बन जाती है, पौधा झाड़ी जैसा दिखता है, फलियां नहीं बनत है। अगर खेत में पौधा ज्यादा हरा लेकिन बिना फलियां के दिखे तो समझ लो फिलोडी है। इस रोग फुदका कीट से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग पौधा उखाड़ दो, कीटन नियंत्रण करो, दवाई का उपयोग करना चाहिए, इमिडाक्लोरोपीट का छिड़काव करना चाहिए, जिससे इस कीट का रोकथाम हो और फिलोडी रोग न फैले। लिप ब्लाइट रोग, इसकी पहचान, पत्तियां पर बड़े भूरे धब्बा किनारे से सूखना, पत्तियां जलन जैसी लगना, बारिश हो अधिक नमी में तेजी से फैलता है। नुकसान, पत्तियां जल्दी सूख जाती है, भोजन बनना कम हो जाता है, उत्पादन घट जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें फंजीसाइड दवा का उपयोग करना चाहिए, जैसे मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करने से इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। तीसरा है सर्कोस्पोरा लिप स्पॉट। इस रोग की पहचान के लिए पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छोटे गोल भूरे धब्बे, बीच में राग जैसी रंग ज्यादा होने पर पत्तियां सूख जाती है। नुकसान, पत्तियां गिरना, पौधा कमजोर हो जाना, उपज घट जाना। इस रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डालकर इस रोग को रोकथाम की जा सकती है। चौथा है मैक्रोफोमिना, जड़ गलन रोग कहते हैं इसे। इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान, पौधा अचानक मुरझाना, जड़ काली पड़ना, तना नीचे से सूखना, ये रोग गर्मी और सूखे मौसम में ज्यादा होता है। नुकसान, पूरा पौधा सूख जाता है, खेत में जगह जगह सूखे पौधे दिखते हैं। रोकथाम, इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भाइयों बीज उपचार करो, खेत में नमी संतुलित रखो। बीज उपचार करने के लिए बेवेस्टिन 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस बीज बोने से पहले इसका बीज उपचार करके बोना चाहिए, जिससे ये रोग नहीं लगता है। अगर लग भी जाए, लगने के बाद में कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर इस रोग को रोका जा सकता है। पाउडर मिल्ड्यू, चूर्णी फफूत रोग कहते हैं। यह पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसे पदार्थ दिखते हैं, बाद में पूरी पत्तियां सफेद दिखती है, पत्तियां सूख जाती है, सुबह के समय इस रोग को ज्यादा साफ दिखता है। नुकसान, यह पौधा कमजोर हो जाता है, दाना छोटा बनता है और उपज में कमी आ जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए वेटेबल सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करने से इस रोग को रोकथाम की जा सकती है। खेत की हर हफ्ता निगरानी करो, शुरुआती लक्षण दिखे तो नियंत्रण करो, संतुलित खाद उपयोग करो, ज्यादा नाइट्रोजन मत डालो, जरूरत पर ही दवाई उपयोग करो, दवाई बदल बदल के उपयोग करो। तो किसान भाइयों, अगर आप समय पर कीट अहु रोग की पहचान करके सही रोकथाम करियो तो तिल की फसल सुरक्षित रहिए, अहु पैदावार भी बढ़िए।
1: अब अपने भैया बहन ने देखो जसुनी वार्ता ग्रीष्मकालीन तिल की फसल में।

में लगवे वाले कीट एवं रोग बाताकार हते शोभाराम ठाकुर। और भैया बहन हो, देखो अब बात कर रहे हैं अपन आज की नसीहत की। बा कहावत तो अपन ने सुनी हुई है कि जंगल में मोर नाचो कौन न देखो। सो देखो जा एक बुंदेली कहावत है। ई कहावत को अर्थ है अपनी प्रतिभा गुणों या मेहनत को प्रदर्शन ऐसी जगह करने हैं जिते कोनो देखवे बारो ना होए। जब कोनो व्यक्ति ऐसे स्थान पर काम करत है जिते उनके काम की मान्यता नहीं होती और यही से जा कहावत बोली जात है। जैसे जंगल में के एकांत में मोर कितनों भी सुंदर नाच करत रहे जब तक ऊखा को देख विवारो ना होए तो देखो ऊ कला को और नाच को कोनो मूल नहीं मानो जाता गया है। ऐसे में जा कहावत बोली जात है कि जंगल में मोर नाचो कौन न देखो। और भैया बहन हो, देखो हो रही है चलवे की बेरा। चलत चलत बता दें कल की ग्राम सभा के कार्यक्रम। कल की ग्राम सभा में अपनी भैया बहन सुने सुनो गीत गुनो बतकाओ जन उपयोगी चर्चाओं और लोकगीतन पर आधारित कम्पेयर्ड कार्यक्रम प्रस्तुति रहे रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। और एक वार्ता सुने कम कृषि भूमि से अधिकतम आय कैसे प्राप्त करें। वार्ताकार हुए सचिन राठौर। और आज की सीख में अपन सुने जो घर बैठो वही सियानो बाजा जाने सो मूर्ख। और देखो गीत संगीत हुई है और हमारा कार्यक्रम अपने भैया बहनों को कैसो लगो है। चिट्ठियां पाती अपने भैया बहन लिख सकत हैं घरनी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर पिन है 471001। और भैया बहन हो देखो अबे देखो गर्मी भी खूब पड़ रही है ना तो गर्मी से अपने भैया बहनों को बच के रहने हैं। देखो आम को पनो प्याज और देखो फुलबाजू के कपड़े और ज्यादा जरूरी हो जब ही अपन घर से बाहर जावे और अपने जो छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी हैं उनको भी ध्यान रखना है और जो अपने देखो ढोल बछेरू हैं उनको भी ख्याल रखना है। काय से देखो बे तो मुंह बोलत नहीं है उनको छाया में रखवे और देखो उनको धूप से बचावे उनको खान पान को भी ध्यान रखवे और देखो अपन ठंडो पानी पी भी रखवे। और देखो अपनी भैया बहन खो जब जरूरी हो जब जावे और देखो पानी खूब पीने अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने। अपने भैया बहन का कहत के पानी पियत नहीं है और ऐसे ही निकल जाते। देखो अपन को पानी इतना पीने खूब पीने हैं जिसने देखो पसीना अपने शरीर से निकले तो पानी की पूर्ति अपने शरीर में होते रहे। और देखो काय के पानी की कमी हो तो अपन लू लपट से बचे रहे हैं और लू लपट अपन को ना लग है। अगर लग जाए तो देखो अपन तुरंत डॉक्टर के पास जावे और इलाज करवावे जोनिया के घर में दवाई रखी और खा लें। तो देखो अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब सो हो रही है देखो चलवे की बेरा। सो अपने भैया बहन से ली थे अनुमति। सो अपने भैया बहन अब हमें दो अनुमति अपनी बहन नंदनी को आ गया। भैया बहन हरो राम राम।

0: ग्रामीण भाइयों के लिए अभी ग्राम सभा का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद डॉक्टर एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज न्यू एंटी टेरर डॉक्ट्राइन। Interviewer is Dr. Shriram Chaulia.
3: Namaskar and welcome.

0: या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था, सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइन्स खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई

0: बॉर्डर लाइन तक जाएगी, तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है। और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक, इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
0: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं, वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव

0: गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शिखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो,

0: आपकी ताकत पर होती है। आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते हैं? जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड एग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी एग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी। देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है। मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है। इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है। और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले। और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है, वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे। ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है। भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है, या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भासित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की

0: कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ, क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सबको लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है, हमको जो है, हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भारत, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है।

0: हाँ मंजिल है, वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है वो आनंद जी मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम का पहला नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत और मदन मोहन का संगीत। फिल्म का नाम वो कौन थी। कार्यक्रम में लीजिए अब हम आपको सुना रहे हैं आया सावन झूम के। इस फिल्म में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फरमाइश आप सभी श्रोता मित्रों की। ये मेल हम तक पहुंचा है मेरठ कैंट से। लिखने वाले हैं दिग्दर्शन कविता, राधा नामदेव, संजय डिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन और दर्शन भाई। जी हाँ, इन्होंने दर्शन भाई लिखा हुआ है, कोई सरनेम ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उनका नाम इस तरीके से सामने आया है। पत्र हम तक हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ, प्रेमलगंज आलोट, रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना और निवान शर्मा, इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू सईद, वसीम वली, राजनंदगांव से याकूब, यूसुफ इमरान इरफान, जेल रूट रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिबा तिवारी, महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल, शीला और गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी, महिमा, नीतू वैद और उनके बहुत सारे साथी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतीत विरक और मीका विरक, ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश ने भी हम तक ये पत्र भेजा हुआ है। और अब देखना यह है कि ये जो हमारे पास ईमेल आ रहे हैं उन ईमेल में यह है सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी, एमएलबी रोड ग्वालियर से हम तक इन्होंने भेजा हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर का ये पत्र आया है, ये मेल आया है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। इसके अलावा चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने भी हम तक मेल भेजा है। ग्राम बछरई, थाना नाराहट, जिला ललितपुर से दिलीप कुमार नामदेव, रानी नामदेव, ग्राम पोस्ट सिद्बाहा, थाना महरौनी, तहसील महरौनी, ललितपुर से पप्पू नामदेव, ममता, विनीता, राजकुमार, ग्राम भदौरा, तहसील महरौनी से ब्रजकिशोर नामदेव, सुखवती नामदेव, अमित कुमार और हेमलता तथा शिवम नामदेव ने भी मेल हम तक भेजा हुआ है। तो लगातार आप सभी के मेल हमारे पास तक पहुंच रहे हैं। जिला मुरादाबाद दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने भी मेल भेजा है। तो लीजिए आया सावन झूम के फिल्म से यह गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

आया सावन झूम के। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर से आनंद बख्शी की रचना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज आशा भोसले की है, फिल्म का नाम है लोफर। जी हां, और पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल।

जिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन, इनका ये मेल हम तक यहां पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा ये दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नाज और बेबी चाहत ने भी हम तक मेल भेजा हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे श्रोता मित्र जो पत्र भेज रहे हैं उनमें से मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणिता और अर्जुन, आकर हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित गवाड़कर और ध्वनि, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल और शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। इसके अलावा ये पत्र हम तक आया है जसपुर उत्तराखंड से, लिखने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिमा नूर। दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र ने ये लिखा हुआ है। इसके अलावा अनारकली बाजार जगरांव से सुनील पाठक, कमल, दीपक मल्होत्रा, आशीष, बेबी गव्या और सुच्चा पाठक का ये पत्र है। फरमाइश करता मैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने लिखा है। तो लीजिए लोफर फिल्म का ये गीत सुनिए, खूबसूरत सा, जिसे अपनी आवाज दी है आशा भोसले ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे लोफर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है शागिर्द। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं जिन्होंने हमें ये मेल भेजा है, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का ये मेल हम तक आया है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, ये बार बार ये पत्र भी आ रहे हैं और मेल भी आ रहे हैं। ग्राम सेवड़ी छतरपुर से बारेलाल प्रजापति, धनीराम, नरेश, कल्लू, रविन्द्र और वृंदावन प्रजापति ने हम तक ये मेल भेजा है। इसके अलावा एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम, गुमला झारखंड से भी हम तक फरमाइश भेज रहे हैं। ग्राम राजापुर, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, सविता, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति, कालापुरा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े का भी मेल हम तक आया है। इसके अलावा पेप्टिक टाउन छतरपुर से लिखने वाले हैं विमला शुक्ला, अंजलि, संयोगिता, सिद्धार्थ, सार्थक और उनके परिवार वाले। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से माधुरी तिवारी, रिंकी, जितेंद्र, मोनू, परी और गौरव तिवारी। हरपालपुर से बलराम शास्त्री, अर्चना तिवारी, कौशलेंद्र, भारतेंद्र और चक्रेंद्र का पत्र हम तक यहां पर आया हुआ है अपनी फरमाइशों के साथ। इसके अलावा और जो हमारे श्रोता मित्र हैं वो लगातार अपने मेल भेज रहे हैं। चंडीगढ़ सिटी से ये मेल हमारे पास तीसरी बार आया है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा ने हम तक मेल पहुंचाया है और अगला मेल हमारे पास आया है इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा ने ये मेल हम तक पहुंचाया हुआ है। इसके अलावा महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम के लिए अपना मेल हम तक भेजा है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने ये मेल हमारे तक पहुंचाया है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा, और इसके पहले जो नाम मैंने लिए थे वो सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हम तक पहुंचाए हुए थे। तो लीजिए शागिर्द फिल्म का गाना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

शागिर्द फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। मन भवन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला।

ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, जिसे लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। फिल्म का नाम था खुशबू। कार्यक्रम का अगला गाना दाग फिल्म से हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं कृष्णा घोट के, प्रशांत शिंदे, रूषि, यशराज, सुनीता, रोहिदास चौक, पंढरपुर सिटी से इन्होंने हम तक ये मेल भेजा है। इसके अलावा जो मेल भेजने वाले हमारे श्रोता मित्र हैं बटिना रोड डबवाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित और तानिया ने भी हम तक मेल भेजा हुआ है। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु और उनके बहुत सारे

साथी। इसके अलावा राशिद हुसैन अंसारी हम तक ये मेल भेज रहे हैं, लेकिन डिटेल इनका अब खुल रहा है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ ने हम तक मेल भेजा हुआ है। और एक ही मेल में बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं तो उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक बार में एक मेल भेजें और एक कार्यक्रम में सिर्फ एक ही मेल भेजें, जिससे कि रिपीटिशन नहीं होगा। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी ने मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब राम चबूतरा कालपी से हम तक ये मेल पहुंचाया है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मुरेकर ने भी हम तक ये मेल पहुंचाया है। इसके अलावा गंज डुंडवारा से शमशुल कमराही, शाहीन फातिमा, दनान खान और अनुन खान का भी हम तक ये मेल आया हुआ है। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने और निवृत्ति आडोकर ने भी हम तक मेल पहुंचाया है। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी। पिछली बार एक हमारे श्रोता मित्र ने शिकायत की थी कि बहुत आराम आराम से नाम पढ़े जा रहे हैं। दरअसल आप समझ सकते हैं कि एक मेल खोलने के बाद तो उसको वापस जाना, उसके बाद दूसरा मेल खोलना और ये भी ध्यान देना कि आखिरकार कहीं ये मेल रिपीट तो नहीं हो गया। इस वजह से इन बातों में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोता मित्रों के नाम पढ़े जाएं। जैसे ये मेल आया है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं और हो सकता है कि उन सभी के बहुत सारे लोगों के पत्र भी हम तक आए हों, बहुत सारे लोगों के अलग से मेल आए हों, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे अपने दोस्तों के नाम भी लिख देते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूं, ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से पूजा वर्मा, देवीदीन अहिरवार, सुनीता, दिनेश, कपिल, ग्राम पोस्ट तीतरा, खलीलपुर, जालौन से अंजलि जाटव, ऋषि जाटव, अनूपपुर से जयमंत्री केवट, अंजलि, रुद्राणी और कृष्णा, अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना मास्टर मैंक और तन्वी, लोहेड़ी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, दिव्यांशु, रेनू और रोनिका, धामोहल्ला पन्ना से कौशल किशोर मट्टू, संगीता मट्टू, हर्षित और वैभव, गायत्री मोहल पनवाड़ी से शिवनारायण पंचाल, देवनारायण, लक्ष्मी प्रसाद, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहनी, गुड्डी और अंकुश, और गोना कुष्माण थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी, अखिलेश कुमारी, रामदेवी चाहना और अनन्या। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूजा वर्मा जी के मेल से हम तक ये मेल आया हुआ है। इसमें अनूपपुर भी है, जालौन भी है, महोबा भी है, सागर भी है, लोहेड़ी भी है, पन्ना भी है, पनवाड़ी भी है और ललितपुर भी है। अब अगर इन श्रोता मित्रों ने अपनी तरफ से अलग से हम तक मेल पहुंचाए होंगे तो उनके मेल भी शामिल होंगे, यानी कहीं ना कहीं वो मेल खुलेगा और हम उनका नाम लेंगे और फिर हमारे श्रोता मित्र शिकायत कर देते हैं कि किसी का नाम दोबारा लिया गया। इसीलिए आप अपनी दोस्ती निभाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेल तो कम से कम अपने अपने भेजिए, अपने पसंद भेजिए। तो लीजिए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है दाग।

दाग फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत था, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम लीजिए, अब हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है दो रास्ते। पसंद करने वाले श्रोता मित्र आप सभी, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ये मेल आया है सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने का। अगला मेल है फाजिकल पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण विशु और विशाल खेड़ा ने हम तक मेल भेजा है। एक बार फिर से पूजा वर्मा का मेल हम तक आया है, अस्तोपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने भी हम तक मेल पहुंचाया है। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड सनावत से हाजी इसहाक लोला मानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयुब शेरी का भी मेल हम तक आया है। इसके अलावा और भी लगातार हमारे पास पसंद आते जा रही हैं। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य का मेल आया हुआ है। साथ ही साथ किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी ने भी हम तक

मेल पहुंचाया है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति और रियांश का पत्र हम तक आया है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका रूप नूपुर, ऋषिका और रॉबिन बिलसराया छत्तीसगढ़ से, रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम गोल्डी, दीप्ति अनुज और ओमजी का पत्र हम तक आया है। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड बंदा नगर इंदौर से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण, गणेश, कार्तिक, संजना परी और मालती, स्वाति, प्रयाग चौधरी। इसके अलावा सतसाहिब रेडियो श्रोता संघ ननौरा श्रीनगर से बलराम दास अहिरवार, कस्तूरी, आराधना, सोनिका उपमा और नैतिक वर्मा ने हम तक पत्र भेजा है। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंदशा, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से हम तक भेज रहे हैं। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, अक्रम हुसैन प्रिंस, वसीम अक्रम, आरिज वसीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अक्रम, रूबीना वसीम, नदीम अक्रम, अक्रम अमन, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख, कुआत बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसोल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, अरहान, हमजा और मुजम्मिल ने ये हम तक अपना पत्र पहुंचाया हुआ है। तो लीजिए, आप सभी की पसंद पर अब हम आपको सुना रहे हैं दो रास्ते फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म में, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। श्रोताओ, कार्यक्रम के समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में एक बार फिर से आनंद बख्शी की रचना। संगीतकार हैं आरडी बर्मन, फिल्म का नाम है पराया धन। पसंद करने वाले श्रोता मित्र हैं गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर विरक जयदेद और मीका विरक, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार दिव्यांग और वंशीलाल श्रीवास्तव, देवरी भाटापाड़ा से गन्नूलाल, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, राजाराम अहिरवार, राधेलाल, प्रवीण, शारदा, दीपा, सीमा और इन सभी ने ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 खरगापुर टीकमगढ़ से हम तक पत्र भेजा है। प्रेमलगन जालोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजुबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, पायल, प्रियांश और ऋषि, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा, भागवत वर्मा ने दतरंगी से पत्र भेजा है, मोहाल्दी वानपुरा राठ से विनोद कुशवाहा, नीरज, मयंक, घनश्याम, सावित्री, प्रेमरानी, दिव्या, नीलम, छोटा बाबू ने हम तक भेजा है और ये बड़ा गजब का पत्र हम तक पहुंचाया है हर्षवर्धन पांडे, हरवंश पांडे, एके पांडे, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि ये जो पत्र लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है और ये उस जमाने की याद दिला रहा है जब वो टाइपराइटर हुआ करता था ना, खट खट खट खट वो शब्द लिखे जाते थे, यानी कि उस जमाने का ये टाइपराइटर है और उस टाइपराइटर से ये पत्र टाइप किया हुआ है। एके पांडे, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश से ये पत्र हम तक भेज रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा निराला पत्र हम तक ये आया हुआ है। दोहा कतर से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और डिलारी रोड चौधरीवाला, मानपुर साबित, जिला मुरादाबाद से शेख हबीबुर रहमान, शेख अब्दुल रहमान का ये पत्र हम तक पहुंचाया है। उमरिया मध्य प्रदेश से ये मेल आया है संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह और ओम प्रकाश सिंह का। इसके अलावा मजनू का टिल्ला से कमला बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक का ये मेल हम तक पहुंचा है। इसी के साथ साथ आदाब गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम ने भी हम तक मेल पहुंचाया हुआ है। जयपाल यादव लोहेड़ी महोबा से राघवेंद्र, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और ये वही पत्र है जिसमें सारे नाम लिखे हुए हैं। एक बार फिर से हम तक आ गया है ये मेल। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से ये भी मैं इसके पहले पढ़ चुका हूं और पूरा भेज दिया गया है। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान और जिशान ने ये हम तक हनुमानगढ़ राजस्थान से मेल पहुंचाया है। तो आप सभी की पसंद पर लीजिए हम आपको सुना रहे हैं ये एक खूबसूरत सा गाना जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है, आरडी बर्मन का संगीत, पराया धन फिल्म में किशोर कुमार की आवाज़।

और लीजिए, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है और चलते चलते हम आपको सुना रहे हैं आशा भोसले की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये गाना, जिसमें राजा मेहंदी अली खान की शब्द रचना, मदन मोहन का संगीत है और पसंद करने वाले बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का ये मेल हम तक आया हुआ है। इसके अलावा गौना कुसमार, सौजना मेहरौनी से दीपक कुमार, द्रौपदी रामदेवी, ब्रिजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल, चाहना, आकाश, रानी परी, सूबी, पायल और उनके मम्मी पापा ने भी हम तक ई मेल भेजा है। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ग्राम गेंदा टोला, छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता और गजेंद्र गुप्ता ने भी हम तक अपना ये पत्र भेजा है। मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, छोटी माता मंदिर निकट कोटरा से अमित तिवारी, पूजा, रामबिहारी शास्त्री, आशा, राजा भैया, अभय और कार्तिक तिवारी, रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित और खुशी, रामलीला मैदान सचैणी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु, गीत, अमोल, जानकी, शिवांश और उनके बहुत सारे दोस्त, मैसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न ढाड़े, वाल्मीकि, नीनाजी, स्वप्निल और अजय, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। तो लीजिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, आप सबकी नजर फिल्म का नाम है मेरा साया।

मेरा साया फिल्म के इसी गीत के साथ ही श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भवन से अपने मित्र शिवेंद्र शुक्ला को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के

0: मंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved 2 major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved